सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आज है दिन शुक्रवार, सक संवत 1948 के वैसाख महीने की 18वीं तिथि, तद अनुसार 8 मई सन 2026 आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार।
2: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें हम जानेंगे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
2: मिट्टी की उर्वरता उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मिट्टी के द्वारा पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा व उपलब्ध अवस्था में आपूर्ति कर पाने की शक्ति को ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति कहते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि खाद्यान्न व खाद्य तेलों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की जाए, ताकि देश की बढ़ती जनसंख्या वर्ष 2025 तक 1.4 बिलियन के लिए 300 मिलियन टन अनाज आवश्यक है, जिसकी पूर्ति के लिए पिछले दो दशकों के दौरान खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग के कारण कृषि भूमि का उपजाऊपन घटता जा रहा है। साथ ही कृषि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि उपज भी विषाक्त होती जा रही है। खेतों में गोबर की खाद और पशुओं के मलमूत्र तथा बिछावन का भी बहुत कम प्रयोग हो रहा है। परिणाम स्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी न उपस्थिति में मृदा में होने वाले विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पोषक तत्वों और खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं हो सक रहा है। प्रतिवर्ष अपने देश में प्राथमिक पोषक तत्व का ह्रास होता जा रहा है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है, जबकि इसका आदर्श अनुपात 4:2:1 होता है। किसानों द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होती जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की उपज में बहुत कमी आ गई है। इसी प्रकार धान, गेहूं फसल प्रणाली के अंतर्गत भूमि को आराम न मिल पाने के कारण कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात भी गड़बड़ा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट देखी जा रही है। अत्यधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के प्रयोग करने के बावजूद हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका स्पष्ट कारण है मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का अधिक दोहन, सघन फसल प्रणाली व जीवांश की कमी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। खेती में हर वर्ष एक सा फसल चक्र होने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम होते जा रही है। इसके मुख्य कारण ये भी हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में कमी, मिट्टी का कटाव और बंजर होना, मरुस्थल का अधिक होना, असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना, पोषक तत्व की कार्य दक्षता में कमी, विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के कारण जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों में प्रति फसलों की प्रतिक्रिया में कमी, ऋणात्मक पोषक तत्वों की बचत, फसल अवशेष को मिट्टी में ना मिलाकर चारा और जलावन के रूप में उपयोग करना या तो फसल अवशेष को जला देना, अत्यधिक चरवाही एवं गोबर का जलावन में उपयोग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्षेत्र विशेषकर उर्वरक प्रबंधन, मृदा जांच के अनुसार उर्वरक प्रबंधन, सरकार के द्वारा उर्वरक नीति विधेयक क्षेत्र विशेष के अनुसार मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहने से किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा, उत्पादन खर्च कम आएगा, गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होगा, भूमि में जीव जंतु और जीवाणु की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे पोषक तत्व जो है पौधों को अनुकूल रूप से मिलने लगेंगे, मृदा का प्रदूषण रुकेगा, मृदा सुधारक अपनाने से लगभग 50% रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से किसान भाई बच सकेंगे।
1: श्रोताओं अभी आप सुन

रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज चर्चा का विषय था मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखें। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

0: सुबह तरोताजा जगने के लिए रात्रि की निद्रा प्रकृति का अनुपम उपहार है। शरीर और मन को उचित विश्राम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति की आगामी गतिविधियां भलीभांति संपन्न करने के लिए स्फूर्ति ना मिलेगी, अस्वस्थ होने के आसार बढ़ेंगे। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही दैनंदिन ऊर्जावान जीवंत और स्वस्थ रक्ति निद्रा से सायास स्वयं को वंचित करता है। उचित नींद न लेने की अस्वस्थ प्रवृत्ति से कोई वर्ग अछूता नहीं है। स्कूली छात्रों को होमवर्क का दबाव, युवाओं को बेहतर करियर की बेसब्री, वयोवृद्धों को संतान की शिक्षा आजीविका उनके विवाह आदि की भी चिंता नींद उड़ा देती है। इंटरनेट बहुतेरों की नींद हर रहा है। दूसरे का हथियाने वाला बेहतर खा सकता है लेकिन अच्छी नींद देने वाले को ही आती है। मन उधेड़बुन में रहेगा तो नींद दुष्कर होगी। उचित विश्राम के बाद बहुधा समाधान प्रकट हो जाता है। निद्रा की आवश्यक मात्रा अलग अलग होती है। सामान्यतः रात्रि के लगभग 10 बजे से 6-7 घंटे की नींद सर्वोत्तम मानी गई है। जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए सलाह है कि वे बिस्तर छोड़कर काम में लग जाएं। जान लें कि वे अनिद्रा से नहीं बल्कि चिंता के रोग से पीड़ित हैं। मन मंदिर में कोई बड़ा स्पष्ट उद्देश्य प्रतिष्ठित होगा तो उस दिशा में निरंतर अग्रसर कर्मशील रहेंगे, सार्थकता और संतुष्टि का भाव रहेगा और नींद अच्छी आएगी। जितना अहम एक बड़े उद्देश्य को साधना है उतना ही आवश्यक शरीर एवं मन को विश्राम देना है ताकि दैनंदिन नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती रहे। गहरी नींद और खुला संवाद स्वास्थ्य के आधार हैं। मन में जितना प्रेम और मेलजोल का भाव होगा तो विकार कम आएंगे, चिंताओं समस्याओं से मुक्त रहेंगे और नींद अच्छी आएगी। जिस प्रकार भलाई में बिताया गया दिन खुशनुमा नींद लाता है उसी प्रकार परहित और सत्कारियों में बिताने वाले व्यक्ति का अंतकाल शांतिप्रद और तृप्तिदायी होगा।
1: ये था आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी मन्ना डे और साथियों के स्वर में।

भगवान का मार्ग कठिन है, लेकिन उनका नाम जपने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हम उनकी ओर खींचे चले आते हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आराधना यहीं पे संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस कुछ ही देर में यानी 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप क्रमशः संस्कृत हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। सात बजकर 5 मिनट पर वक्त होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज का विषय होगा वर्तमान जीवन शैली और हड्डियों में दर्द। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अनुप मोहन नायर, भेंट करता है संजीव कुमार लाल। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुरीली, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म गीत। 7:45 पर वक्त होगा कार्यक्रम गांधी कथा का, संकलन गौरव शिखर रॉय की है, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 8:30 पर हमारे रांची केंद्र से। लोक रंग में आज आप सुनेंगे लोकगीत संथाली भाषा में, कलाकार हैं मनोहर महतो और साथी, समय होगा 8:45। 9:00 आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रसरंजन। शास्त्रीय संगीत का वक्त होगा 9:30 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग देसी में अलाप और धमार गायन। कलाकार हैं अभिराम पाठक, पखवाज पर संगत कर रहे हैं राम बच्चन पाठक और हारमोनियम पर साथ देंगे संचाली नाग। दस बजे वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी अमन में शफकत और नफस की पागेज की। शायर ए नशीक गुरुदेव टैगोर की अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसमतवीर, आर के नारायण की अफसाना निगरी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान, मकाला अच्छी हुक्मरानी आवाम के खिदमत की बुनियाद, मकाला निगार महफूज आलम, कंपियर मोहम्मद हिदायतुल्ला और फौजिया तजी हैं, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की होगी। जोहार रांची का वक्त होगा सुबह के 10:30 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आपके पसंद के गीत। हमारी बहनों की कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का समय होगा 12:00, जिसमें आज चर्चा होगी सड़क सुरक्षा करे मानव जीवन की रक्षा। भेंट वार्ता आकाशवाणी 90 वर्षों की सुरीली यात्रा, भेंट करता राकेश शर्मा, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा 12:30 पर। 1:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। अनुरंजनी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:20 पर। कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं गिरिजा देवी। 1:45 पर समय होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। मिड डे न्यूज आप सुन पाएंगे 2:00 और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती का समय होगा 2:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 3:00 आप सुनेंगे नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी। रांची मेलोडीज का समय तो आपको पता होगा 3:30 पर। 4:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे पुनः उर्दू कार्यक्रम।

ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। 2 अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ

0: के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है वर्तमान जीवन शैली और हड्डियों में दर्द। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनुप मोहन नायर, उनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों, मौसम परिवर्तन लेता रहता है, ये एक प्रकृति का नियम है। और जब मौसम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन करता है, जैसे जाड़े से हम गर्मी में प्रवेश करते हैं और गर्मी के बाद जब जाड़े का मौसम शुरू होता है तो शरीर में कुछ परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है। जहां हम बात कर रहे हैं हड्डियों से संबंधित परेशानियों, खासकर ठंड के समय में मौसम जब परिवर्तन लेता है, काफ़ी ठंड बढ़ जाती है या फिर बादल घिरने लगता है, तो ऐसे में हड्डियों में हलचल महसूस होती है, हड्डियां दर्द करने लगती है और फिर आपका जीवन प्रभावित होने लग जाता है। इन सारे विषयों पर बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे वर्तमान जीवन शैली के बारे में कि अपने जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित करें। लगातार काम नहीं करें एक स्थान पर बैठ कर के, क्योंकि लगातार काम करने से हड्डी में परेशानी शुरू होने लग जाती है, फिर आप दर्द से कराहने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वरिष्ठ हड्डी नस एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप मोहन नायर साहब से। अनूप मोहन नायर साहब, स्वागत है इस कार्यक्रम में। नायर साहब, सबसे पहले हम बात करें कि जब मौसम परिवर्तन लेता है, खासकर ठंड के मौसम में, तो कौन कौन सी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है? खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो दर्द से कराहने लग जाते हैं, दर्द से परेशान होने लग जाते हैं।
3: मौसम एक चेंज है, जो एक्सटर्नल चेंज है, तो यूजुअली मैं अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ड्रॉ करता हूँ हमारे संस्कृति से, हमारे पूर्वजों से। तो आजकल हम लोग जो बाहर का चेंज है, चाहे वो प्रेशर सिचुएशंस हो, साइकोलॉजिकल चेंज हो, तापमान, मेंटल तापमान की बात हो, या वो फिजिकल चेंजेस की बात हो, जैसे बाहर चेंज आ रहा है, उसके प्रति बहुत जागरूक और क्यूरियस नहीं है। वो जो बाहर के चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को थोड़ा चेंज नहीं करते, और वो चेंज नहीं करने की वजह से, उतना अवेयर नहीं होने की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ठंड का मौसम आया और सडनली टेम्परेचर बढ़ गया, तो बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनको मसल्स में अकड़न, जोड़ों में अकड़न, सडनली दर्द उठ जाना, एक दिन सुबह सोकर उठे, जल्दीबाजी में नहाए और कमर अकड़ गया और फिर 10 दिन काम नहीं कर पाए। तो ये क्यों होता है? इसका प्राइमरी कारण है कि मौसम चेंज हुआ, ठंडा आया, तो जो ब्लड फ्लो था अपने मसल्स का, अपने टेंडन्स का, लिगामेंट्स का, ये कम हो गया। स्पेशली जब हम लोग रेस्ट किए, जब हम लोग स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, उस टाइम इस ब्लड फ्लो के कमने से वो अकड़न जो आई, उसको हमने उठकर थोड़ी देर रिलीव नहीं किया, अपने आप को स्ट्रेच नहीं किया, क्योंकि हमने अपना शरीर पर ध्यान नहीं दिया, सुने नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग सडनली कुछ मूवमेंट कर लिए और बढ़ गया दर्द। तो ये एक्सटर्नल चेंज के प्रति जागरूक अगर हो जाते हैं हम लोग इंटरनली, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी।
2: कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें जब मौसम परिवर्तन लेता है, दर्द से हम अपने आप को बचाव कर पाए?
3: तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो अपने को करना है वो है कि प्रोटेक्शन लेना है। अब अगर सर्दी का समय आ गया, सडनली टेम्परेचर डिप कर गया, तो हम लोग अवेयर होकर तुरंत थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहनकर रेस्ट करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, मिटन्स पहन लेंगे, स्पेशली जिनको गठिया है, जिनका एज 70 पार हो गया है, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, वो वेल प्रोटेक्टेड रहे सोते वक्त, छोटा सा तकिया ही यूज़ किए, अपना काम का चीज़ जैसे मोबाइल, पानी वगैरह पास में रखे, रात को सडनली पानी पीने के लिए स्ट्रेच किए और कंधा अकड़ गया, ऐसा भी होता है। तो ये ब्लड फ्लो कम होने वाली सिचुएशन में हम लोग अपनी चीज़ें पास रखकर वेल क्लैड होकर सोएंगे तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है उठने पे। जैसे ही सो के उठते हैं लोग, काम में लग जाते हैं।

0: हो गया, अलार्म बजा, फटाक से उठे, तो उस टाइम जरूरी है कि उठकर शांति से 5 मिनट बैठें। वो वैसे भी हमारे पूर्वज बताए हैं कि सुबह उठ के आपको शांति से बैठना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपना दिन के बारे में सोचना चाहिए। उस दौरान हम लोग अपने पैरों को, हाथ को हल्के से स्ट्रेच किए और ब्लड फ्लो को थोड़ा एस्टैब्लिश किए। उसके बाद जब अपना थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया, खून पैन दौड़ने लग गया, तो काम पे लग गए। और दूसरा चीज़ है प्रोटेक्शन कोल्ड से लेने में, पानी का। सुबह उठ के अगर हम लोग ठंडा पानी से नहा लिए, या इनफ गर्म नहीं था पानी, या बहुत जल्दी नहाने चले गए, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं किए, अगेन प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक सुबह उठ के अवेयर होके स्ट्रेच करने से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेम थिंग कहीं और स्थिर बैठने पर भी, एक घंटा बैठ के उठे तो थोड़ा समझदारी से उठे, झट से उठ गए तो अकड़न आ गई।
1: ये बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और ये चाहते हैं कि तुरंत फुरंत हमारी आज की दिनचर्या शुरू हो जाए, और ऐसे में हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर बैठते हैं, और फिर जब लापरवाही करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। वर्तमान जीवन शैली काफ़ी हद तक हम लोगों को प्रभावित कर दिया है। हमारे रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, काम करने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है। हम लगातार काम करते रहते हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती है?
0: जीवन शैली में जो मेन चेंज आया है वो ये है कि हम लोग शरीर से स्थिर हो गए हैं, मूवमेंट कम कर लिए हैं, और मन हमारा अस्थिर हो गया है। मन ज़्यादा घूमने लगता है, उधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, जबकि हमारे पूर्वज सिखा कर गए हैं कि मन को स्थिर बनाना है और शरीर को अस्थिर रखना है, शरीर हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए। तो अब जो हम लोगों की जीवन शैली, वर्कोहोलिज्म, बैठने का, मोबाइल का यूसेज, सिस्टम्स पे बैठना, कंप्यूटर पे काम करना, तो इसमें हमारा ब्रेन क्विक वहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत देर बैठी हुई है। अगर इसका ऑपोजिट हम एम करें, एटलीस्ट कोशिश करें कि मन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाएं, स्थिर बने मन, एक जगह पे रहे और फोकस करके काम कर सकें, हमको डाइवर्जेंस नहीं हो, इधर मोबाइल नहीं बजे, उधर घर की बात नहीं याद आ जाए, और उसी तरह से हमारा बॉडी हमेशा हर 15 से 20 मिनट एक स्ट्रेच पोजीशन में हो, तो ये सबसे अच्छा जीवन शैली है। अब ये बोलना एज अ डॉक्टर मुझे आसान लगता है, लेकिन कई लोग हैं जैसे कंप्यूटर इंजीनियर है, अब उसके लिए तो सिस्टम पे कम से कम 8 घंटा काम करने से ही उसका दिनचर्या पूरा होगा, उसकी नौकरी पूरी होगी, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उसमें अब सिस्टम में ये चेंजेस लाना होगा कि वो अपने मोबाइल में ही अलार्म लगाएं, अगर मोबाइल पे हैं तो मोबाइल रख दें, हर आधे घंटे में एक अलार्म लगा लें, अलार्म बजा, वो अपना मोबाइल रख दिए, अलार्म बजा, अगर वो काम पे हैं तो एक बार खड़े हो गए, एक बार अपने आप को स्ट्रेच कर लिए। कभी भी वो कोई मीटिंग में हो, फ़ोन पे हो, तो वो ईयरफोन का यूज़ करें और अपने रूम में टहल कर कॉल अटेंड करें, क्योंकि जब हम बैठे हैं एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम साथ में हो जाएगा, बॉडी थोड़ा अस्थिर हो जाएगा, उससे हिलने डुलने से अपना ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरा है कि हम लोग अपना कोई भी ब्रेक्स जो लेते हैं वो एक्टिव ब्रेक हो। लोग काम से ब्रेक लेते हैं यूजुअली खाना खाने के लिए, कोई एडिक्शंस के लिए, अगर उसी समय वो लोग ब्रेक लें, हल्का सा अपना बॉडी को स्ट्रेच कर लें, तो काम में और भी एक्टिवली वापस आ सकते हैं। सिमिलरली वो दिन में क्या खा रहे हैं उससे उनके बॉडी का अवेकनेस बहुत डिपेंड करता है। हम लोग यूजुअली चाय पीते हैं जिसमें चीनी रहता है, उसके साथ में एक बिस्किट खाते हैं जो मैदा का बना है, तो ये एक शुगर हाई दे के अपने को और डाउन ले जाएगा बॉडी को। तो इस तरह की छोटे डिस्टेंसेस चेंजेस अपने लाइफ में लाकर, और हम लोग अपना कंटिन्यूस मूवमेंट रख कर बॉडी को एक्टिव बना सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा अगर मोबाइल में सब लोग आज एक अलार्म लगा लें, इसको एक ट्रायल के रूप में ही लें कि एक 10 दिन के लिए आप लोग सुबह जब उठते हैं और शाम को जो सोते हैं उसके बीच में हर आधे घंटे में एक अलार्म लगा लें। वो अलार्म जब बजता है उसको स्नूज कर दें, वो बंद हो जाएगा, और एक बार 10 सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड तो कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी काम के बीच में कर सकते हैं, एक स्ट्रेच कर लें, अपना हाथ को ऊपर उठाएं, पूरी तरह से एक अंगड़ाई लें, एक बार खड़े होकर साइड की तरफ 2 बार घूमें और बैठ जाएं। इतना कर देखिए, बहुत आपके एक्टिविटी में, काम की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हम बात करें कि लगातार यदि हम बैठ कर कार्य करते हैं, जैसा आपने बताया आजकल सूचना क्रांति का दौर है और खासकर कंप्यूटर या लैपटॉप के सहारे जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो लंबे वक्त तक बैठ कर कार्य करते हैं, तो यदि हम इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, थोड़े समय के बाद हम अपने चेयर से उठ जाएं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, यदि इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ होने की

0: भावनाएं बढ़ जाती हैं।
1: सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फाइब्रोमायल्जिया सिंड्रोम, ये दो बीमारियां हम लोग देखते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्योंकि गर्दन रखने का तरीका ठीक नहीं है और एक ही जगह पर रखा जाता है और उसके आसपास की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, पोस्चर ख़राब होता है, इसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन के हड्डियां घिस जाती हैं और उसके बीच की नसों को दबाती हैं। और फाइब्रोमायल्जिया सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें आपकी मांसपेशियाँ लगातार तनाव में रहती हैं, आप एज यूजुअल जैसा हम लोग डिस्कस किए कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, शरीर बोलता है, दर्द तो शरीर का एक भाषा है जो आपसे शरीर कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन आप उसकी भाषा को, उसकी चीख को नहीं सुनते हो और फिर वो एकदम कराह उठती है तो प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो फाइब्रोमायल्जिया सिंड्रोम भी रेगुलर स्ट्रेचिंग ना करने से और मसल्स की एक्टिविटी या मसल्स संबंधित कुछ लिफ्टिंग या स्ट्रेचिंग ना करने से होता है। ये दोनों बीमारियां सबसे कॉमन है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप मोहनार साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज आपने जानकारी प्राप्त की वर्तमान जीवन शैली और हड्डियों में दर्द। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अनूप मोहन नायर, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुरीली में। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म लवारिस के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

दोस्तों, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म प्रेमनगर से। संगीतकार हैं SD बर्मन और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है

0: परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सुरीली में आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सरगम से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।
2: मुझे मत रोको,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, अभी ना जाओ फिल्म हम दोनों से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, संगीत दिया है जयदेव ने और रचना है साहिर लुधियानवी की।

0: दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन है गौरव शिखर रॉय की और प्रस्तुति नूतन प्रसाद की है।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की। वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांधी जी के ये वचन उनके जीवन में पूरी तरह झलकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए उन्होंने सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा।

प्रस्तुत है दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए गांधी जी द्वारा सत्य रक्षा के कुछ प्रसंग, स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। वकालत के धंधे में मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया और मेरी वकालत का बड़ा भाग केवल सेवा के लिए ही अर्पित था और उसके लिए जेब खर्च के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं लेता था, कभी कभी जेब खर्च भी छोड़ देता था। विद्यार्थी अवस्था में भी मैं यह सुना करता था कि वकालत का धंधा झूठ बोले बिना चल ही नहीं सकता। झूठ बोलकर मैं न तो कोई पद लेना चाहता था और न पैसा कमाना चाहता था, इसलिए इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका में इसकी परीक्षा तो बहुत बार हो चुकी थी। मैं जानता था कि प्रतिपक्ष के साक्षियों को सिखाया पढ़ाया गया है और यदि मैं मुवक्किल को अथवा साक्षी को तनिक भी झूठ न बोलने के लिए प्रोत्साहित कर दूं तो मुवक्किल के केस में कामयाबी मिल सकती है, किंतु मैंने हमेशा इस लालच को छोड़ा है। मुझे ऐसी एक घटना याद है कि जब मुवक्किल का मुकदमा जीतने के बाद मुझे यह शक हुआ कि मुवक्किल ने मुझे धोखा दिया है। मेरे दिल में भी हमेशा यही ख्याल बना रहता था कि अगर मुवक्किल का केस सच्चा हो तो उसमें जीत मिले और झूठे हो तो उनकी हार हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि फीस लेते समय मैंने कभी हार जीत के आधार पर फीस की दरें तय की हो। मुवक्किल हारे या जीते, मैं तो हमेशा अपना मेहताना ही मांगता था और जीतने पर भी उसी की आशा रखता था। मुवक्किल को मैं शुरू से ही यह कह देता था, मामला झूठा हो तो मेरे पास मत आना। साक्षी को सिखाने पढ़ाने का काम कराने की मुझसे कोई आशा न रखना। आखिर मेरी साख तो यही काम हुई थी कि झूठे मुकदमे मेरे पास आते ही नहीं। मेरे कुछ ऐसे मुवक्किल भी थे जो अपने सच्चे मामले तो मेरे पास लाते थे और जिनमें थोड़ी भी खोट खराबी पास ले जाते थे। एक अवसर ऐसा भी आया जब मेरी बहुत बड़ी परीक्षा

मुवक्किल की ओर से मैं छोटा वकील था। बड़े वकील ने पंच की भूल देखी थी, पर उनकी राय थी कि पंच की भूल कबूल करना मुवक्किल के लिए बंधन रूप नहीं है। उनका यह स्पष्ट मत था कि ऐसी किसी बात को स्वीकार करने के लिए कोई वकील बंधा हुआ नहीं है जो उसके मुवक्किल के हित के विरुद्ध जाए। मैंने कहा, इस मुकदमे में रही हुई भूल स्वीकार की ही जानी चाहिए। बड़े वकील ने कहा, ऐसा होने पर इस बात का पूरा डर है कि अदालत सारे फैसले को ही रद्द कर दे और कोई होशियार वकील मुवक्किल को ऐसी जोखिम में नहीं डालेगा। मैं तो यह जोखिम उठाने को कभी तैयार न होऊंगा। मुकदमा फिर से चलाना पड़े तो मुवक्किल को कितने खर्च में उतारना होगा और कौन कह सकता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। इस बातचीत के समय मुवक्किल उपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है कि मुवक्किल को और हम दोनों को ऐसी जोखिमें उठानी ही चाहिए। हमारे स्वीकार न करने पर भी अदालत भूल भरे फैसले को भूल मालूम हो जाने पर बहाल रखेगी, इसका क्या भरोसा है? और भूल सुधारने की कोशिश में मुवक्किल को नुकसान उठाना पड़े तो क्या हर्ज होगा? बड़े वकील ने कहा, लेकिन हम भूल कबूल करें तब ना। मैंने जवाब दिया, हमारे भूल न स्वीकार करने पर भी अदालत उस भूल को नहीं पकड़ेगी अथवा विरोधी पक्ष उसका पता नहीं लगाएगा, इसका भी क्या भरोसा है? बड़े वकील ने दृढ़ता पूर्वक कहा, तो इस मुकदमे में आप बहस करेंगे? भूल कबूल करने की शर्त पर मैं उसमें हाजिर रहने को तैयार नहीं हूं। मैंने नम्रता पूर्वक कहा, यदि आप न खड़े हों और मुवक्किल चाहे तो मैं खड़ा होने को तैयार हूं। यदि भूल कबूल न की जाए तो मैं मानता हूं कि मुकदमे में काम करना मेरे लिए असंभव होगा। इतना कहकर मैंने मुवक्किल की तरफ देखा। मुवक्किल थोड़े से परेशान हुए। मैं तो मुकदमों में शुरू से ही था। मुवक्किल का मुझ पर पूरा विश्वास था। वे मेरे स्वभाव से भी पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप ही अदालत में पैरवी कीजिए, भूल कबूल कर लीजिए। भाग्य में हारना होगा तो हार जाएंगे, सच्चे का रखवाला राम तो है ही ना। मुझे खुशी हुई। मैंने दूसरे जवाब की आशा ना रखी थी। बड़े वकील ने मुझे फिर चेताया। उन्हें मेरे हट के लिए मुझ पर तरस आया, लेकिन उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया। अपनी सलाह के औचित्य के विषय में मुझे लेश मात्र भी शंका न थी, पर मुकदमे की पूरी पैरवी करने की अपनी योग्यता के संबंध में काफी शंका थी। ऐसी जोखिम वाले मसले में बड़ी अदालत में मेरा बहस करना मुझे बहुत जोखिम भरा जान पड़ा। अतएव मन के कांपते कांपते मैं न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ। जो ही उक्त भूल की बात निकली कि एक न्यायाधीश बोल उठे, यह चालाकी नहीं कहलाएगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जहां चालाकी की गंध तक नहीं थी, वहां चालाकी का शक होना मुझे असहाय प्रतीत हुआ। मैंने मन में सोचा, जहां पहले से ही जज का ख्याल बिगड़ा हुआ है, वहां इस मुश्किल मुकदमे को कैसे जीता जा सकता है। मैंने अपने गुस्से को दबाया और शांत भाव से जवाब दिया, मुझे आश्चर्य होता है कि आप पूरी बात सुनने के पहले ही चालाकी का आरोप लगाते हैं। जज बोले, मैं आरोप नहीं लगाता, केवल शंका प्रकट करता हूं। मैंने उत्तर दिया, आपकी शंका ही मुझे आरोप जैसी लगती है। मैं आपको वस्तु स्थिति समझा दूं और फिर शंका के लिए अवकाश हो तो आप अवश्य शंका करें। जज ने शांत होकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको बीच में ही रोका, आप अपनी बात समझा कर कही। मेरे पास सफाई के लिए पूरा पूरा मसाला था। शुरू में ही शंका पैदा हुई और जज का ध्यान मैं अपनी दलील की तरफ खींच सका। इससे मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने विस्तार से सारी जानकारी दी। न्यायाधीश ने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और वे समझ गए कि भूल असावधानी के कारण ही हुई है।

अतः बहुत परिश्रम से तैयार किया हिसाब रद्द करना उन्हें उचित नहीं मालूम हुआ। प्रतिपक्षी के वकील को तो यह विश्वास ही था कि भूल स्वीकार कर लेने के बाद उनके लिए अधिक बहस करने की आवश्यकता न रहेगी, पर न्यायाधीश ऐसी अस्पष्ट और सुधर सकने वाली भूल को लेकर पंच फैसला रद्द करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। प्रतिपक्षों के वकील ने बहुत माथापच्ची की, पर जिन न्यायाधीश के मन में शंका पैदा हुई थी वे ही मेरे हिमायती बन गए। वे बोले, मिस्टर गांधी की गलती कबूल न की होती तो आप क्या करते? जिस हिसाब विशेषज्ञ को हमने नियुक्त किया था उससे अधिक होशियार अथवा ईमानदार विशेषज्ञ हम कहां से लाए? हमें मानना चाहिए कि आप अपने मुकदमे को भलीभांति समझते हैं। हिसाब का हर कोई जानकार जिस तरह की भूल कर सकता है वैसी भूल के अतिरिक्त दूसरी कोई भूल आप न बता सके। तो कायदे की एक मामूली सी त्रुटि के लिए दोनों पक्षों को नए सिरे से खर्च में डालने के लिए अदालत तैयार नहीं हो सकती। और यदि आप यह कहें कि इसी अदालत को यह केस नए सिरे से सुनना चाहिए तो यह असंभव न होगा। इस और ऐसी अनेक दलीलों से प्रतिपक्षी के वकील को शांत करके तथा फैसले में रही भूल को सुधार कर अथवा इतनी भूल सुधार कर पुनः फैसला भेजने का हुक्म पंच को देकर अदालत ने उस सुधरे हुए फैसले को बहाल रखा।

1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। तथापि दक्षिण अफ्रीका में वकालत के समय के उनके संस्मरण तो अनेक थे, पर ये कुछ संस्मरण सत्य में उनके विश्वास को जीवन में कार्यक्षेत्र में कायम रखने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति थी गौरव शिखर राय की और वाचन स्वर था अवनीश कुमार सिन्हा का।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन थी गौरव शिखर राय की और प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं।

आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब से बस कुछ ही देर में।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78 लाख 96

0: हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्ट

0: को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संताल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए का कर किया संग्रह। महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50 अतिरिक्त आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग ने निर्धारित 18,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में सबसे बड़े आयकरदाता बने हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेलवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेलवन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देवघर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और पुनासी परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए।
2: सभी विभागों को बहुत ही गहनता के साथ हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो डायरेक्शन देना था उचित, जो जनहित के लिए, वो डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं और उसको टाइम टेबल वगैरह फिक्स किया है। इतना दिन के अंदर इसको पूरा कर लेना है, यही आज की मीटिंग है।
0: रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलखो ने जनगणना 2027 के तहत मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की स्वगणना की। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 15 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक वेबसाइट सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: न्यूज ऑन air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में रजिया नदी पर सौर्य ऊर्जा संचालित उद्धव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया। इस योजना के तहत नदी का पानी लिफ्ट कर सैकड़ों एकड़ भूमि तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
1: निवासियों का जो गांव, मंडल का जो गांव है, यादव का जो गांव है, वो नदी से ऊपर है और यहाँ पर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये रजिया नदी पर सिंधवा की पंचायत है, हमारा गांव है, तायरी पंचायत में हमने बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन दिया है। यहाँ के लोग अब नदी से पानी उठाएंगे और अपने खेतों तक पहुँचाएंगे।
0: रांची यातायात पुलिस ने शहर में बिना वैध दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले बस, ऑटो और टोटो वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चलाए गए अभियान के दौरान कुल 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें 3 बस, 103 ऑटो और 5 टोटो वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों से वैध कागजात रखने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाकर वाहन चलाने की अपील की है। झारखंड में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को हाई स्पीड बाइक दी जा रही है। इस कड़ी में हजारीबाग पुलिस को 42 नई बाइक मिली है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों में तेज पेट्रोलिंग तथा अपराधियों का पीछा करने में मददगार साबित होगी।
2: झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे, 42 बाइक नए आए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहां पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहां के थानों को, ताकि वहां पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सके। स्पॉट्स को हम लोग कवर करें जहां अड्डेबाजी होती है, जहां परेशानी होती है, जहां आम नागरिक ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहां पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें।
0: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जांच अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। मौसम। झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आज से 13 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में 9 और 10 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइक्वांडो। रांची में कल से 12वीं रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 600 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और क्लबों की ओर से भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग, जबकि दूसरे दिन कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित खिलाड़ी वर्ष भर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार में हुए 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम बंगाल में आज होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तैराकी प्रतिभाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अत्याधुनिक सुविधा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, 100 आतंकी मारे गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से मिलेगी छूट। और अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संथाल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000

करोड़ रुपए का कर किया संग्रह। महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से अमृता के साथ सुन रहे हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं पे संपन्न होता है। कलाकार थे मनोहर महतो और साथी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म फना के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है शान और कैलाश खेर ने। शब्द रचना है प्रसन्न जोशी की और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और बबला मेहता के स्वर में। फिल्म का नाम है चांदनी, संगीत दिया है शिवहरी ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साजन से, जिसे गाया है SP बाला सुब्रमण्यम ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं आशा भोसले और सुरेश वाडकर के स्वर में ये प्यारा सा गीत फिल्म सत्या से। संगीत दिया है विशाल ने और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम रस रंजन यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। कलाकार हैं अभिराम पाठक। पखावज पर संगत कर रहे हैं राम बचन पाठक और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं संचाली नाग।

0: इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा अमन में शफकत और नफस की पागिजगी, शायर ए नशीक गुरुदेव टैगोर का अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसतफिर, आर के नारायण की अफसाना निगारी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान मकाला, अच्छी हुक्मरानी अवाम के खिदमत की बुनियाद मकाल निगार, मकबूज अगलम, कंपियर मोहम्मद अहिदायतुल्ला, फौजिया तजी, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है। कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर

0: आकाशवाणी रांची है। सामईन की खिदमत में पेश है हमारा उर्दू प्रोग्राम। सामईन को फौजिया का प्यार भरा आदाब। सामईन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हाजिर हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब।
1: और कैसे हैं?
0: मैं खैर हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैर से होंगे और हमारे सामईन भी।
1: बिल्कुल, बिला ताखीर आप बताएं कि आज हमारे सामईन के लिए आप किन किन मौजूआत पर बात करेंगी।
0: बिल्कुल हिदायतुल्लाह, हमारे पास आधे घंटे का वक्फा होता है जिसमें हमें बहुत सारी बातें अपने सामईन के सामने रखनी पड़ती है, खास करके वो सब बातें जो इस मंथ में आने वाला होता है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे रेड क्रॉस डे पे जो 8 मई को हम लोग मनाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फौजिया, ये तो बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल हो जाता है। हम जो ब्लड डोनेट करते हैं के जरिया जो है ना, किसी की जिंदगी को हम बचाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक अजीम शायर हैं गुरुदेव टैगोर, जिनकी वफात का दिन है 9 मई को।
1: जी जी, ये शख्सियत जो है बहुत ही आला शख्सियत, ना जाने कितने इनके नज्म हैं जिसमें के देश प्रेम और हुब्बुल वतनी का एक खूबसूरत नमूना मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम बातें करेंगे मंटो, एक बागी अदीब थे, उनके बारे में कुछ तफसील से गुफ्तगू करेंगे।
1: बिल्कुल, ये सआदत हुसैन मंटू जो है ना, इन्होंने जो अफसाना लिखे थे, अक्सर उस जमाने में इनके अफसाने पर केस हो जाता था कि इतनी गंदी और इतनी फुहश अफसाना लिख रहे हैं।
0: एक बागी अफसाना निगार थे वो।
1: और फौजिया, एक और शख्सियत है आप शायद भूल रही है।
0: जी जी।
1: उनका भी नाम आप बताएं।
0: बिल्कुल, आर के नारायण, जिन्होंने मालगुड़ी रेस तख्लीकात थी, ये बहुत ही खूबसूरत थी, उसे देखने में और उसे सुनने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। मालगुड़ी रेस,
1: ये तो बहुत अच्छे एक अफसाना निगार ये भी थे।
0: हिदायतुल्लाह, बातें करते हैं इंसानी खिदमत का उसूल, यानी कि रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बुनियादी उसूलों में इंसानियत सरे फहरिस्त है, जो हर फर्द की जान, सेहत और इज्जत का तहफ्फुज यकीनी बनाता है। कुदरती आफात, जंगें और वबाओं में रजाकारों की कोशिशें इंसानियत को बचाने का बेहतरीन सबूत है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमदर्दी ही बका की कलीद है।
1: बिल्कुल फौजिया, ये दिन मनाने का ख्याल सबसे पहले 1933 में जापान के शहर टोक्यो में मुनाकिदा 15वीं बैनुल अक्वामी रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया, जहां पहली जंग अजीम के बाद अमन और जख्मियों के तहफ्फुज पर जोर दिया गया। 1948 में लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसे रस्मी तौर पर 8 मई को हेनरी डेंट की सालगिरह के तौर पर तस्लीम किया।
0: और सामईन, ये दिन दुनिया भर में फंड रेडिंग और आगाही मेहमान के जरिए लाखों लोगों की मदद करता है, जो इंसानी बका को मजबूत बनाता है। हर साल 8 मई को मनाया जाने वाला ये दिन रजाकाराना तौर को फरोग देकर समाजी हम आहंगी को यकीनी बनाता है। और हिदायतुल्लाह, आप बताएं कि रेड क्रॉस के 7 बुनियादी उसूल हैं।
1: बिल्कुल, रेड क्रॉस के बुनियादी उसूल की अगर हम बात करें तो इंसानियत ह्यूमैनिटी पर मबनी है, जिसमें के जान और सेहत और इज्जत का तहफ्फुज और दोस्ती को फरोग देना जो है इसका बुनियादी उसूल है। अच्छा, और एक और बड़ी बात क्या है, गैर जानिबदारी, यानी नस्ली, मजहबी या सियासी तफरीक के बगैर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों को मदद करना, यानी कि जानिबदाराना तो इसमें है ही नहीं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं या किस मजहब के हैं, आप जो भी हैं इंसान हैं और इंसानियत के नाते आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। उसी तरह से है कि किसी तनाज़ू या फरीक हिमायत न करना, किसी भी लड़ाई झगड़े में जो है नहीं पढ़ना। इसी तरह से फौजिया, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, यानी कि खुद मुख्तार रहते हुए हुकूमती पॉलिसियों से मुतासिर न होना।
0: और हिदायतुल्लाह, हम सब जानते हैं कि रेड क्रॉस डे मनाने का भी एक बहुत अच्छा ये दिन है। अपने सामने को ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हिदायतुल्लाह, कि खून अतिया करना बहुत नेक काम है और जिससे आपकी सेहत को भी बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, अगर हम खून अतिया कर रहे हैं तो उसके जरिया से हमारे जो सेल्स हैं वो नए सेल्स तैयार होते हैं और बहुत जल्द तैयार होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक तो ये आप

0: हो, कानून का पासो लिहाज रखे और कोई भी कानून से बालतर ना हो। अच्छी हुक्मरानी की खसूसियत है समाजी इंसाफ कायम करना। अगर कभी कोई कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसे कानून की गिरफ्त में लाना और कानूनी चाराजुई करना। अच्छी हुक्मरानी के लिए अदालती निज़ाम का बेहतर होना भी ज़रूरी है, जहाँ हर शहरी इंसाफ हासिल कर सके, अदालती फैसले वक्त पर आएँ और लोगों में अदालत के तईं एहतराम व कद्र हो। अच्छी हुक्मरानी का एक मकसद शख्सी आज़ादी है, जहाँ हर शहरी आज़ाद फ़जा में सांस ले सके, अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर परवान चढ़ा सके, रोज़ाना के मामूलात आसानी से हल कर सके, वो अपने मसाइल हुकूमती अदारों तक बासानी ले जाए, जहाँ उनका बिला ताखीर तदारुक हो। ज़ाब्तों को आसान और दोस्ताना बनाना अच्छी हुक्मरानी की अलामत है। मुतल्लिका इदारों के अहलकारों का रवैया मुसबत और दोस्ताना हो, वह आवाम के मसाइल आसानी से हल करें, आवाम का इस्तेहसाल ना हो, जहाँ रिश्वतखोरी और दाली का सामना नहीं करना पड़े, आवाम को हरासा नहीं किया जाए और ज़ाब्तों के तहत शहरियों के मसाइल हल हों। अच्छी हुक्मरानी की अहमियत उस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब बदउनवानी को किसी भी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए, ज़िंदगी के हर शोबे को करप्शन से पाक रखा जाए, ख्वाह वो ज़खीरा अंदोज़ी हो या खुर्दनी अशिया में मिलावट जैसे संगीन जराइम। अच्छी हुक्मरानी आवाम की सेहत को अव्वलीन तरजीह देती है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए मियारी अस्पताल और शफाखाने दस्तयाब होते हैं, जहाँ मुनासिब और बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसी तरह आवामी तकसीम का निज़ाम भी सहल और काबिल रसानी बनाया जाता है, ताकि लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया आसानी से मैसर आ सकें। अच्छी हुक्मरानी के तहत एक मुनज़्ज़म और मौसर निज़ाम कायम होता है, जो माशरे के मुख्तलिफ़ इदारों की निगरानी करता है और जहाँ कहीं खामियाँ नज़र आएँ उन्हें दूर किया जाता है। इस निज़ाम में गरीबों, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की फलाह व बहबूद को खुसूसी अहमियत दी जाती है, ताकि माशरे में अदल, तवाज़ुन और खुशहाली कायम रह सके। अच्छी हुक्मरानी आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह देती है और सब के लिए यकसा मौके फराहम करती है। ये पॉलिसियाँ समाज के कमज़ोर तबकात, माजूर अफराद और ख़वातीन को ख़ास तहफ़्फ़ुज़ और मुराद देती हैं। आवाम की ज़रूरियात के मद्देनज़र पॉलिसियाँ वज़ा की जाती हैं, जैसे तालीम, रोज़गार, खुराक और रिहाइश का बंदोबस्त। आमदोरफ्त के वसायल मुहैया किए जाते हैं और तलबा किसानी की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जाता है। नशाखोरी और जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात उठाए जाते हैं। सब के लिए यकसा तालीमी और रोज़गार के मौके दस्तयाब होते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम को फ़रोग दिया जाता है। माजूर व ज़ईफ़ तबक़ात को ख़ुसूसी मुराद और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यह सब माशरती मुसावात और खुशहाली की ज़मानत देता है। क़ानूनी और अख़लाक़ी इकदामात कानून की हुक्मरानी को मजबूत बनाता है, जराइम पर लगाम लगाई जाती है और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। नशा और दिगर समाजी बुराइयों की हौसला शिकनी की जाती है, ताकि माशरा सेहतमंद रहे। हालांकि अच्छी हुक्मरानी के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, जैसे नाखानदगी, गुर्बत, बेरोज़गारी और अदम आगाही, हुकूमती अदम इस्तेहकाम, ब्यूरोक्रेसी, सुख्त फीताशाही, बदउनवानी, रिश्वतखोरी और शफाफियत की कमी, जवाबदेही का फुकदान, अदम मुसावात और इदारों की गैरफ़ालियत। इन पर काबू पाने के लिए आवाम को पॉलिसियों से आगाह किया जाए, तरबियत और तरगीब दी जाए, इबलाग ज़राए से बेदारी लाई जाए और खिदमात की फरहमी आसान बनाई जाए। अच्छी हुक्मरानी इदारों और लीडरों को जवाबदेह बनाती है, एहतसाब शफाफियत को यकीनी बनाती है। जमहूरियत में ये लाजमी अंसुर है, इसके बग़ैर कामयाबी का तसव्वुर नामुमकिन है। मगर इसके लिए हुकूमत और आवाम دونوں کی بیداری اور فعال شراکت ضروری ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے اچھی حکمرانی کی اہمیت اور افادیت بے شمار ہیں۔ یہ اچھی حکمرانی جمہوریت کو استحکام بخشتی ہے، جمہوری اقدار کو فروغ دیتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ درحقیقت اچھی حکمرانی ہی کی بدولت ہم جمہوریت کے شیریں ثمرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک منظم، انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرے کی جانب گامزن ہیں۔
1: سامعین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے جناب محفوظ عالم سے ان کا مقالہ اچھی حکمرانی، عوام کی خدمت کی بنیاد۔ فوزیہ، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اب اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مزید باتیں کریں۔
2: جی ہاں سامعین، اب وقت کے مقرر کا ٹائم یہی بھی ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے دوست فوزیہ
1: اور ہدایت اللہ کو دیں اجازت۔ آداب
2: آداب۔

इसी के साथ कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय था अमन में शफकत और नफस की पागेजगी, शायर ए नशीक गुरुदेव टैगोर की अजमत को सलाम, मालगुड़ी का मुसत्सवीर, आर के नारायण की अफसाना निगारी, मंटो एक बागी अदीब की दास्तान, मकाला अच्छी हुक्मरानी आवाम के खिदमत की बुनियाद, मकाल निगार महफूज आलम, कंपियर मोहम्मद हिदायतुल्ला और फौजिया तेजी, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की थी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार रांची के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कृति
1: और मैं हूं अमृता।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार
1: जोहार।
0: दोस्तों जरा सोचिए, आप स्कूल के बाद क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कुछ और? हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सपने पूरा करने का सबसे बड़ा राज क्या है? जुनून। जी हाँ, वही जुनून जो आपको अंदर से जलाता है और लक्ष्य तक पहुंचाने की मोटिवेशन देता है।
1: बिल्कुल सही कहा कृति आपने। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, सचिन तेंदुलकर आपका आइडियल है, आप हर दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, मैच देखते हैं, बल्लेबाजी के गुण सीखते हैं, चाहे कितनी भी धूप या बारिश हो, आपका खेलने का जुनून जो है आपको मैदान तक खींच ही लाता है। यही जुनून आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मदद करेगा।
0: बिल्कुल, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ये जुनून किसी भी फील्ड में हो सकता है।

0: शायद आपको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप हर रोज़ रियाज करते हैं, हर गाने को सीखने की कोशिश करते हैं। या शायद आपको साइंस में दिलचस्पी हो, तो आप हर नए इन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। यही जुनून आपको सफल साइंटिस्ट बना सकता है।
1: हाँ, जुनून जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उन्हें करने में आपको कैसा लगता है इसे महसूस करें। अपने सपनों को हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सोचें, शायद वही आपका जुनून बन सकता है। हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई चीज़ें करने में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जुनून सिर्फ उसी चीज़ से पैदा होगा जिसे करने में आपको सच्ची खुशी मिलती है।
0: हाँ, और दोस्तों याद रखिए, जुनून वो रास्ता है जो आपको सफलता और खुशी की तरफ ले जाता है। अपने जुनून को जगाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की और पहला कदम बढ़ाएं। जुनून वो आग है जो आपको जलाए रखती है। लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, जुनून आपको हार नहीं मानने देगा।
1: हाँ, और आप अपने रास्ते पर यूं ही चलते रहें, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।

0: अब इतिहास में आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि आज के दिन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: 1945 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ था।
1: और आज ही के दिन सन 1999 में बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया था।
0: आज ही के दिन 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए।
1: और आज ही के दिन सन 2001 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से भी बाहर हुआ। और 2004 में आज ही के दिन श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था।

0: कृति, अब बातें करते हैं कि आज जो है इतिहास में किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1929 में भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था और 1916 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ था।
0: और आज के दिन सन 1895 में गोप बंधु चौधरी, जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था। और आज के दिन 1926 में जो तपन राय चौधरी, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जन्म हुआ था। जीन हेनरी डेनेडेट, जो कि मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1828 ईस्वी में हुआ था।

0: कृति हम बातें कर रहे हैं इतिहास के बारे में, तो अपने श्रोताओं को ये भी बता दे कि आज जो है किन किन महान हस्तियों का निधन हुआ था। तो 1982 में आत्माराम रावजी देशपांडे, जो कि प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार थे, उनका निधन हुआ था। और 2013 में जिया फरीदुद्दीन डागर, जो कि भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और 1993 में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जो निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: और आज ही के दिन 1899 में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक वासुदेव चापेकर का निधन हुआ था। और 1927 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दामोदर संजीवय का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1915 में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक भाई बाल मुकुंद का भी निधन आज ही के दिन हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। तो कृति, अपने श्रोताओं को मौसम के बारे में बता दिया जाए।
4: हाँ, तो चलिए अमृता, आप थोड़ा मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं, जो देखा जाए तो लगभग हर दिन बदल ही रहा है।
3: बिल्कुल, आधे समय आप देखेंगे तो धूप खिली रहेगी, और आधे समय देखेंगे तो फिर वो घनघोर
4: बारिश होती है, फिर ओला भी गिरते हैं,
3: आंधी आती है।
4: बिल्कुल, तो झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची समेत राज्य में शनिवार को तूफानी हवा के साथ बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जगह पर बारिश हुई है।
3: हाँ बिल्कुल, और वहीं आपको बता दें कि अधिकांश जिलों का तापमान अभी भी सामान्य से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम पारा जो है 32.6 व न्यूनतम 19.7 डिग्री रहा है। अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे व न्यूनतम पारा जो है 4 डिग्री नीचे है। राज्य में जो है मौसम का हाल तो ऐसे भी खराब ही चल रहा है कृति। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक एक टर्फ लाइन बनी है, और उड़ीसा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।

0: है, जिससे बारिश होने का पूर्वानुमान है।
1: और राज्य में अगले 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 9 मई को रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

0: तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अमृता चलिए अब हम हमारे श्रोताओं को कुछ काम की खबरें बता देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अपने श्रोताओं को काम की खबर जरूर बताते हैं। सबसे जरूरी खबर ये है कृति कि SBI के ग्राहक अब ATM या डेबिट कार्ड गुम होने पर फोन कॉल के जरिए उसे ब्लॉक करा सकेंगे। SBI ने टोल फ्री नंबर

0: 1800-1234 और 1800-2100 जारी किया है। फोन कर ग्राहक मांगी गई जानकारी देकर एटीएम ब्लॉक करा सकेंगे। तो ये बहुत ही काम की खबर है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कभी ना कभी किसी न किसी का एटीएम जो है वो गुम हो जाता है, और एटीएम गुम होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक जाने से बैंक का भी जो है समस्या जो है पहुंच जाता है।
1: और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब भी आप अब शिकायत दर्ज करा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 1930 या मोबाइल नंबर 9771432133 जारी किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के ईमेल आईडी cyber@jhpolice.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।
0: हाँ, और साथ ही आपको श्रोताओं ये भी बता दें कि ई पे टैक्स सेवा के तहत अब करदाता जो है RTGS और NEFT के जरिए पेमेंट गेटवे मोड से भी कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले करदाताओं के लिए यह विकल्प मौजूद नहीं था, अब इस विकल्प के आ जाने के बाद उन्हें कर के भुगतान में आसानी होगी।
1: और किसी भी व्यक्ति के परिवार में हुए जन्म मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क करवाया जा सकता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के मुताबिक परिवार में हुए प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है। तो ये थी काम की खबरें।
0: हाँ बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं जो हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, और आपके साथ कभी भी जैसे आपका एटीएम गुम होता है, आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर आजमाएं।
1: ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।

0: कृति, आज हम अपने श्रोताओं को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं?
1: तो आज हम हमारे श्रोताओं को मनाली घुमाने ले जा रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है।
0: हाँ बिल्कुल, मनाली जो है कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है।
1: गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल, आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का अलावा जो है मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छन कर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, जो मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की।
0: हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि आप मनाली में जो है कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आप जा सकते हैं हिडिंबा मंदिर, यह समुद्र तल से लगभग 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे घुंघरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
1: और आप मणिकर्ण भी जा सकते हैं, यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गर्म पानी का झरना है ये, और कहा जाता है कि पार्वती माँ के कर्ण फूल यहाँ खो गए थे, उसके बाद से इस झरने का जल गर्म हो गया है।
0: हाँ, मनाली में बहुत सी रोमांचक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। ये जगह वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप सभी जाएं और घूमें और आनंद उठाएं।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सोहराई कला के बारे में। यह एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था।
1: हाँ, इस क्षेत्र के जो इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला जो है गुफाओं की दीवारों से निकलकर घड़ों की दीवारों में अपना स्थान बना पाने में सफल हुआ है।
0: झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्व सदियों से रहा है। बदलते परिवेश में कथित आधुनिकता के नाम पर लोगों का दुर्भाग्यवश इस कला

0: के प्रति उपेक्षा भाव इसके अस्तित्व पर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है।
1: हाँ, राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सोहराई पर्व के दौरान देसज दुधी माटी से सजे घरों की जो दीवारों पर महिलाओं के हाथों से हुनर अब बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब दुधी मही के जगह चूने ने ले ली है।
0: उस समय ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ की महिलाओं इस कला से अपने घरों दीवारों को सजाना नहीं जानती हो। आज स्थिति बदल चुकी है, अब तो इसके कलाकार और इससे जानने वाले लोगों की संख्या भी गिनती में रह गई है।

0: कृति, मौसम का हाल तो हम सभी देख रहे हैं कि बदलते मौसम में जो है लोगों की तबीयत खराब हो रही है।
1: हाँ,
0: कभी ठंड हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो ये ठंड और गर्मी की वजह से बहुत सारी चीजों में हम लोगों के एहतियात बढ़ने की
1: आवश्यकता है। और बदलते मौसम, गर्मी से बरसात, या फिर कहें तो मिश्रित मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी समस्याएं तो आम है। तो इन समस्याओं से कैसे आप बचें, उसके लिए हम हमारे श्रोताओं को कुछ प्रमुख स्वास्थ्य टिप्स दे देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को खान पान में सावधानियां बरतनी होगी। बाहर का तला भुना या खुला खाना खाने से बचें, घर का बना हल्का और ताज़ा खाना खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर का सेवन करें, जो कि विटामिन सी बढ़ाता है। हमेशा पानी उबालकर या फिल्टर करके पिएं। पेट के इन्फेक्शन से बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अदरक और तुलसी चाय वाली चाय या फिर काढ़ा पिए।
0: हाँ, और खान पान के साथ जो है अपनी हाइजीन पर भी ख्याल रखें। हाथ धोएं साबुन से, नियमित रूप से जो है अपने हाथ को धोएं, विशेषकर बाहर से आने के बाद। नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए कपड़े और जूते जो है पूरी तरह से सुखा कर पहने। बारिश में भीगने पर तुरंत नहाएं और गर्म कपड़े या सूखे कपड़े पहने।
1: और आपको मच्छरों से भी बचाव जरूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए सोते समय यह बहुत ज़रूरी है। और कूलर, टैंक या फिर घर के आसपास पानी को ना जमा होने दें।
0: हाँ, बिल्कुल। और साथ ही जो है श्रोताओं, आप पर्याप्त नींद लें। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें। हल्का गर्म पानी पीने से गले की खराश और पेट की समस्याओं से राहत मिलेगी।
1: हाँ, और अगर आपको कभी तेज बुखार हो या फिर जोड़ों में दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो, तो आप डॉक्टर के पास भी तुरंत जाएं।

0: तो कृति, बातें तो हमारी बहुत सारी थी और बातों का जो सिलसिला है अभी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और इसी के साथ हमें यानी मुझे अमृता को
1: और कृति को दे इजाजत। नमस्कार, जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से है भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मनी कपूरी, लक्षनपुर से है विश्वनाथ साहू और पिपिरिया से है दुर्गा राम साहू। इन लोगों ने फरमाइश की है अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गाने की।

अगली फरमाइश आई है गुलाम फिल्म के गाने की। इस गाने के फरमाइश भेजी है पटियाला से और इसे भेजा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने। इस गाने को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रॉपर्स से और इसे भेजा है हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जेतेक बीरक और मीका बीरक ने। इन लोगों ने फरमाइश की है राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है नदिम श्रवण ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश है गोला बाजार बक्सर से, जिसे भेजा है श्रद्धानंद आर्या, अभिनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और इनके साथ है मोहित। इन लोगों ने फरमाइश की है आओ प्यार करें फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है कुमार सानू ने, शब्दबद्ध किया है सामराज ने और संगीत दिया है अधेश श्रीवास्तव ने।

इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ है मेरी सखी राखी।
1: नमस्कार बहनों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगी, साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख रही होंगी।
0: हाँ राखी, आजकल तो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त भी काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, मौसम में काफ़ी बदलाव भी होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बहनों की चुनौतियाँ जो हैं थोड़ी बहुत तो बढ़ी गई होंगी, क्यों?
1: हाँ हाँ निधि, जब चुनौतियाँ आती हैं तो हम थोड़ा अधिक सावधान और सजग भी तो हो जाते हैं ना। सावधानी से ही संबंधित बातें आज बतानी है बहनों आपको, इसलिए शायद निधि ने सावधानी की बात शुरू की।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे हमें जीवन के हर एक पहलू में सावधान रहने की ज़रूरत है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, है ना? तो बहनों, आज हम बातें करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिवर्ष मई में मनाया जाता है।
1: हाँ बहनों, इस अभियान का यह उद्देश्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को जो है वो घटाकर आधा कर दिया जाए।
0: बिल्कुल, और जो चोट चपेट में जो आ जाते हैं लोग, तो उसमें भी कमी आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो बहनों, सड़क सुरक्षा मानव जीवन की रक्षा करता है। इसका अर्थ है यातायात के नियमों का पालन करके मानव जीवन को सुरक्षित रखना। लापरवाही से की गई ड्राइविंग, जैसे मोबाइल का उपयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज गति गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
1: हाँ हाँ, तो आइए जानते हैं सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बहनों, और उसका महत्व भी आपको बताते चले, है ना?
0: हाँ बताओ राखी हमारी बहनों को।
1: सुरक्षा जो साधन है उसमें क्या होता है कि दोपहिया वाहनों पर हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए। यह जो है वो जोखिम को कम करता है। और ये भी हम आपको बताते चलें कि सीट बेल्ट का उपयोग भी आप हमेशा करें, ये सब कुछ आपकी ही सुरक्षा के लिए है।
0: बिल्कुल, इसमें लापरवाही ना करें। और तेज़ गति हादसों का मुख्य कारण है। 1% गति बढ़ाने से घातक दुर्घटना का जो जोखिम है वो 4% तक बढ़ जाता है। तो तेज़ गति से बचने की ज़रूरत है। खास करके राखी देखोगी कि युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शौक होता है बहुत तेज गति में गाड़ी चलाने का।
1: बिल्कुल,
0: तो घर के लोगों को ये बताने की जरूरत है और इस पर कड़ी नजर भी रखें। शराब पीकर वाहन चलाना तो हम जानते ही हैं कि गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है और ये जानलेवा भी है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि अभी तुमने बताया विनेदे कि मोबाइल का उपयोग करते हुए लोग गाड़ी चलाते हैं, ये भी गलत है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि पैदल यात्री जो हैं वो सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग भी करें और बच्चों को भी सड़कों से दूर रखें या फिर अपने साथ उंगली पकड़कर उन्हें सड़क पार करवाएं बहनों।
0: हाँ, बिल्कुल, तो अगर हम सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे तो हम हादसों को बहुत कम कर सकते हैं,
1: क्योंकि जीवन एकदम अनमोल है बहनों। इस बात का ध्यान रखें और जीवन बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत प्यार भरा है और जीवन
0: की रक्षा हमें ही करनी है, पल पल करनी है। तो पल पल हम रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम सावधान भी रहें। तो बहनों आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है। और बहनों, हमें पता है कि आप अपने ज़िंदगी को बड़े प्यार से जी रही हैं, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से आपका अपने कार्यक्रम में। हम दो सखियां आपके साथ हैं, राखी और निधि।
1: और बहनों, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो लीजिए, प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा, ये विषय है आज का। हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: बहनों, आकाशवाणी 8 जून को अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस सुरीली यात्रा के गौरवपूर्ण अनुभव से हमारे श्रोतागण अभिभूत हैं। तो आइए, आज अपने कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं हम, और साझा करते हैं कुछ विशेष अनुभव। आज के हमारे अतिथि हैं हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, व्यंगकार, आलोचक और सेवानिवृत्त प्राध्यापक राखी विश्वविद्यालय, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: धन्यवाद।
2: आकाशवाणी रांची से आपका गहरा जुड़ाव रहा है, और आकाशवाणी से ही कहें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं?
3: 90 वर्षों को तो मैं कैसे समझता हूँ, लेकिन 70 वर्ष तो करीब इसको याद ही है
2: जी।
3: रांची के आकाशवाणी केंद्र से तब से मैं जुड़ा, जब रेडियो में से स्टेशन भी खोल रहे थे, यहाँ से आवाज आती थी, हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, आकाशवाणी रांची। तब से मेरा जुड़ाव रहा है आकाशवाणी रांची के साथ। इस केंद्र को मैंने विकसित होते हुए देखा है, यहाँ के केंद्र निदेशकों को देखा है। एक मेहरोत्रा साहब पहले आए थे,

0: दिल्ली से श्री करतार सिंह दुग्गल जैसे व्यक्ति आए थे, जिन्होंने आकाशवाणी के सौजन्य से अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, आकाशवाणी रांची का।
1: जी आकाशवाणी में समय समय पर, या हम यूँ कहें कि समय के साथ साथ क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं?
0: एक बदलाव जो मुझको याद आता है, शुरू में लाइव प्रसारण होता था, जीवंत प्रसारण, रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। अब मान लीजिए आधे घंटे प्रसंग है, एक कहानी पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक कविता सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यंग आलेख सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है। अब तीनों व्यक्तियों को मौन साथे रहना होगा जब तक कि पूरे चंक का प्रसारण समाप्त न हो जाए। आज रिकॉर्डिंग की सुविधा है, आप आइए सुनिए, वो रिकॉर्डेड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुविधा तो मिली ही है, शुरू में थोड़ी कठिनाई होती थी। मुझको याद है आधे घंटे का चंक था, हम लोगों को कहा गया था कि आपको निवृत्त होना है, निवृत्त हो लीजिए, खांस लीजिए, थूक लीजिए, आधे घंटे तक फिर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो वो कहानी पढ़ रहा है, इसको कविता सुनानी है, लेकिन चुप मौन साधे रहना है। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ बड़ा आराम हो गया, एक अंतर तो ही दिखता है।
1: जी
0: हाँ,
1: आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय संगीत और साहित्य के प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
0: अद्भुत, अविस्मरणीय है। बड़े से बड़े साहित्यकार, सारे नाम इसको याद नहीं आ रहे हैं, आकाशवाणी ने हम लोगों के कानों में को उनकी ध्वनि से तृप्त कराया। अब सारे नाम पूरा दिमाग में आ नहीं रहे हैं, लेकिन देश के मूर्धन्य साहित्यकार, उनकी ध्वनियां हमारे कानों में पड़ी हैं आकाशवाणी के माध्यम से। बहुत बड़ी बात है, संगीत के क्षेत्र में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। देश की विरल विभूतियों को, जैसे मुझको याद है बहुत पहले की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उनका भाषण मैंने आकाशवाणी पर सुना है। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है आकाशवाणी का इस क्षेत्र में। और फिर बाद में जो जीवंत प्रसारण हुए, जैसे आकाशवाणी केंद्र रांची में करतार सिंह दुग्गल साहब जब आए थे, तो उन्होंने अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष। अब सोचिए उसमें सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे सिराज गोरखपुरी, अल्पायु हुए एक कवि सलाम मसीह शहरी साहब, वो आए हुए थे, मजाज साहब आए हुए थे। क्या कहूँ मैंने, आप समझिए कि कितना प्रभावी था उनका पाठ। सलाम मछली शहरी ने जो कुछ सुनाया था, सन 1960 में मैंने सुना था, और आज भी वो पंक्तियां मेरी स्मृति में अमर है। दूसरी आकाशवाणी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, कहाँ अब ये आवाजें सुनने को हमको, अब तो है भी नहीं, ये लोग तो इतिहास हो गए, लेकिन इस इतिहास को जुगा लिया है आर्काइव में, वो आवाजें सुरक्षित होंगी आकाशवाणी के। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं नाम मुझे जैसे सलाम मछली शहरी की पंक्तियां आज भी मेरे जहन में गूंजती हैं, जो उनके मुख से हमने सुनी थी। यही तो है,
1: बड़ा सुखद अनुभव रहा है।
0: तो इसमें क्या संदेश?
1: जी
0: क्या संदेश?
1: आप आकाशवाणी रांची से जुड़े हैं काफी समय से, तो क्या कोई ऐसा यादगार या विशेष अनुभव रहा है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे?
0: बहुत सारे अनुभव। शुरू में जब बिल्कुल मैं युवा था, एक रोमांच होता था, मुझको याद है मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय हो गए, श्रवण कुमार गोस्वामी
1: जी,
0: और उस जमाने में बड़े साहित्यकारों को प्रोड्यूसर बनाकर आकाशवाणी से जोड़ा गया था। ये योजना स्वचरानंद पंत की है जी, जो रांची में लाल बाबू यानी राधा कृष्ण प्रोड्यूसर बनकर आकाशवाणी से जुड़े थे। तो स्वामी जी की कहानी प्रसारित हुई, इसको लगा कि ये तो अमर हो गए मेरी कहानी। तो राधा कृष्ण ने कहा कि आपकी ये रचना मेरे पास है, शायद मुझको अच्छी लगी है, इसका वाचन कीजिए। वही रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, लाइव वाचन होता था। रोमांच ही दूसरा था कि आकाशवाणी से मेरी आवाज जा रही है और लोग सुन रहे हैं, वो दौर था
1: जी। आकाशवाणी के कुछ कार्यक्रम अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लोग याद करते हैं, तो कुछ पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में हमें बताए।
0: एक तो है सर्वभाषा कवि सम्मेलन
1: जी।
0: पहले तो नागपुर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल होने का मुझको सुख मिला था। बाद में एक दो साल पहले रांची में भी सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ। इतना आनंदकर वो था, देश भर की भाषाएं एक मंच पर, हिंदी और उर्दू के अलावा शेष कविताएं पढ़ी जाती थी मूल कवि के द्वारा, और फिर एक अनुवादक कवि होता था जो उनका अनुवाद सुनाता था
1: जी।
0: और कुछ कविताओं के तो अनुवाद के जैसे पंजाबी है, तो वो इतनी करीब है हिंदी के कि अनुवाद न भी हो तो वो समझ में आ जाए। अब नागपुर में जो मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री से जो सुना था, तो आज भी मेरे ध्यान में तैरता है, जबकि रांची में भी ऐसा सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो चुका है। अनुवाद की कई भाषाओं के अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है हिंदी उर्दू के अलावा शेष भाषाओं का अनुवाद भी प्रसारित करवाते हैं। एक मूल कवि होता है, एक अनुवादक कवि होता है
1: जी।
0: जैसे पंजाबी में नागपुर केंद्र से मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री को जो सुना था, वो पंक्तियाँ आज भी मेरी स्मृति में, आप ऐसे समझे कितना प्रभावी होता था यह कार्यक्रम। वो पंजाबी कवित्री ने कहा था, हकीकत था नसीहत है
1: जी।
0: मेरी माँ ने बहुत सारी नसीहतें दी थी, कुड़ियाँ यूँ कूद कूद कर नहीं चलती, दबे पाँव चलती, कुड़ियाँ यूँ दीदा थार थार के नहीं देखती, नीची नजर देखती। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी को भी नसीहतें दी, मैंने कहा कि तुझे बहुत सारी नसीहतें मिलेगी, उन नसीहतों पर ध्यान मत देना, तेरे मन में जो आए वो करना, सामने अगर दरवाजा बंद मिले तो तोड़ कर आगे निकल जाना।
1: क्या बात है।
0: तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के में जो अंतर आ रहा है वो सुनने में अच्छा लगा, अच्छा लगता है। रांची में भी एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो ही गया
1: जी। कई नए कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी ने मंच प्रदान किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे नए कलाकारों को मंच प्रदान करने में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
0: कुछ तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन अब आकाशवाणी कैसे निर्णय कर सकता है कि ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन मुझको स्मरण है, मुझको वो नाम याद है कि उनको लेखक बनाने में आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही है। वो प्रारंभ में लिख रहे थे, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा जब आकाशवाणी से उनकी कहानियां प्रसारित हुई, उनकी कविताएं प्रसारित हुई, अच्छा लगता था। और कई नाम, अभी यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई नाम मुझको याद हैं कि आकाशवाणी के इसी प्रसारण के कारण उनका मनोबल बढ़ा और वो हिंदी के अच्छे कहानीकार बन गए, और वो हिंदी के कहानीकारों में शुमार और शामिल। यही तो है, आकाशवाणी का बड़ा योगदान है, इसमें क्या समझे
1: जी। मनोबल बढ़ा, यही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ,
1: सबसे बड़ी बात है कि उन्हें मंच मिला, लोगों ने सुना और फिर वो आगे बढ़े। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही, तो अपने लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरा करने के प्रयास में आकाशवाणी को और क्या विशेष करने की आवश्यकता है?
0: ठीक है, ऐप के माध्यम से उसका प्रसार बढ़ा तो है, और ठीक है, कुछ नया तो मैं इसको सुन

0: नहीं रहा है कि जो और करे वो।
1: नहीं, अच्छा लगता है जब गांव में देहातों में जब एक विनोदी प्रसंग याद आ रहा
0: जी
1: है, जब दूरदर्शन आया तो एक मेरे मित्र जो पहले आकाशवाणी में ही कार्यक्रम अभिलाषी थे, बाद में दूरदर्शन में चले गए। वो कहते थे कि अब क्या कीजिएगा, दूरदर्शन में क्योंकि चित्र सामने आता है तो किसी दर्शन में ही बैगन नीला दिख रहा है, कहा मजा आ रहा है। यहाँ तो जो कुछ होना है ध्वनि के माध्यम से ही होना है। लेकिन ये कला देखिए, जैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है कि नई विधाएं भी जरूरत के अनुसार विकसित होती है। जैसे आकाशवाणी में केवल ध्वनि के माध्यम से बातें हम तक पहुंचनी है, ये श्रव्य माध्यम है, दृक माध्यम तो है नहीं, तो ध्वनि रूपक ये एक नई विधा बनी। स्वयं मेरे कई रूपक ध्वनि रूपक प्रसारित हुए और कई तो बहुत प्रशंसित हुए, और तो खुद मैं अपनी शोक प्रशंसा क्या करूं। तो कुछ नई नई विधाएं भी विकसित हो जाती, ध्वनि रूपक की विधा आकाशवाणी के चलते भी विकसित हुई। वरना नाटक तो दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम है, केवल श्रव्य माध्यम से भी नाटक हो सकते हैं, यह आकाशवाणी ने हमको सिखाया। अब नाम याद नहीं आ रहा, आकाशवाणी से तो एक विशेष कार्यक्रम ही हुआ करता था नाटक का, रात में शायद व्यंग नाटक होते थे, हास्य नाटक होते थे, होते थे।
0: जी बचपन में हमने सुना था सर, कुछ दांत रे दांत ऐसा कोई व्यंग नाटक था आपका,
1: हाँ
0: प्रसारित होता था, बाप के बाप दांत रे दांत कुछ ऐसा था।
1: हाँ वो मेरे जहन में आ गया था, सिमडेगा मैं उन दिनों रहता था,
0: जी
1: और एक आदमी, अब जनजातीय समुदाय के लोग सबके चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता, बेचारे आदिवासी, तो एक बंगाली डॉक्टर थे, एक ही डॉक्टर थे उस समय,
0: जी
1: बहुत पहले की बात है, वो यद्यपि सरकारी अस्पताल था लेकिन वो अठानी लोगों से लेते थे आसानी। तो एक व्यक्ति आया दांत दिखाने, वो
0: जी
1: चिल्ला रहा था, बाप रे बाप, दांत रे दांत, दर्द दे दर्द। डॉक्टर साहब ने कहा, कहाँ है, मुंह खोलो, कहीं दांत को उखड़ाने होगा। तो भीतर सर्दी लाने के लिए चले गए, कंपाउंडर भी चला गया, सब्जी लेके आएंगे, इतना तो खड़े हैं। तब तक दूसरा कोई आदिवासी, अरे बाप रे बाप, सगर देह में बच्चा मई लिया, तो दांत वाला जो था वो कहा था, वो तो मई लिया पूरा देह में, सगर देह में बच्चा है। तो दांत वाला हट गया और बुखार वाले कहा कि तो तकलीफ ज्यादा है भाई, तो है पहले दिखा ले। तो बुखार वाला आके बैठ गया, दांत के डॉक्टर साहब आए, मुंह बोलो, और पहले वाले का दांत जहाँ था उसी दांत को पकड़ के उन्होंने उखाड़ दिया। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जाओ जाओ ठीक हो जाएगा, खून बह रहा है, कोई बात नहीं है। तो तुमने कहा था कि दांत में दर्द है, तो बोला कि हम नहीं बाबू, मोर तो देह में बच्चा है।
0: जी
1: डॉक्टर साहब ने कहा, अरे कंपाउंडर साहब कहाँ चला गया, हूँ दांत बच्चा वाला तो भाग गया हूँ दूर इसका तकलीफ देख के। वही मैंने दांत वाला एक जमाने में नाटक लिखा था।
0: बड़े छुट्टी में अनुभव रहे हैं आप।
1: हाँ, मैंने बात यहाँ से शुरू हुई थी, एक नई विधा ध्वनि नाटक या ध्वनि रूपक का जन्म हुआ था। मुझको याद है साहित्य अकादमी की पत्रिका है ना, क्या नाम उसका, समकालीन भारतीय साहित्य,
0: जी
1: तो मैंने अपना एक ध्वनि रूपक यथावत समकालीन भारतीय साहित्य को भेज दिया था, और यह लिखा था कि इस नाटक को मैं ध्वनि रूपक के रूप में ही इसलिए भेज रहा हूँ कि यदि आमतौर पर लोग ध्वनि रूपक को रंग रूपक के रूप में बदल देते हैं, यानी ध्वनि संकेत जो है उनके लिए रंग संकेत दे दिए,
0: जी
1: और इस तरह से ध्वनि नाटक को रंग नाटक के रूप में लोग छपा लेते हैं, प्रकाशित कर लेते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि ध्वनि नाटक कैसे लिखे जाते हैं, लोग जानेंगे कैसे?

0: यदि सारे ध्वनि नाटकों को हम लोरंग नाटक के रूप में बदल देंगे तो उस समय जो समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक थे उन्होंने मेरा लगभग आधे घंटे का एक ध्वनि नाटक यथावत प्रकाशित किया। समकालीन भारतीय साहित्य में मेरा ध्वनि नाटक यथावत छपा था
1: जी। तो बहुत सारे सुखद अनुभव ऐसे रहे जो आपने साझा किए हमारे श्रोताओं से। सर आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: क्या कहें, बिल्कुल याद आया, बताया, अच्छा लगा आपसे बातें करके, अपनी बातें लोगों से साझा करके। धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी और इनसे बातें कर रही थी राखी शर्मा।
3: तो बहनों, ये हमारे लिए सचमुच में गौरव का क्षण है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो गए। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम ऐसे ही हमेशा हमें उत्साहित करता रहेगा। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें।
2: तो राखी, अब वक्त हो चला है बहनों को अलविदा कहने का। और हाँ, बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। बहनों, अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
3: राखी को। नमस्कार।
4: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ा

0: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
1: जी
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है, नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना, और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
1: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
0: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक।

7 मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।

सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।

0: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले, जो

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीपन दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और

क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: communication between locomotives, signalling systems and trackside equipment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of global economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname.
1: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
0: The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh has said India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. And with that, we end this news bulletin.
2: Akashvani ka ye Ranchi kendra hai. Aaiye ab sunte hain pradeshik samachar.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से तीन गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर प्रखंड परिसर में स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच गेहूं प्रसंस्करण मशीन तथा मिनी राइस मिल का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत कुल 40 प्रसंस्करण इकाइयां लाभुकों को सौंपी गईं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित 65 लाभुकों के बीच 17,24,000 रुपये की सहायता राशि भी वितरित की गई। झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर अक्टूबर नवंबर में देवघर में शुरू होगा, जिसकी जानकारी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी। यह पूर्वी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वीजा बनाने की सुविधा नहीं है। शुरुआत में यहां छोटे देशों के लिए वीजा बनेंगे और पर्यटन या पढ़ाई के लिए सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और बैंकॉक जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हैदराबाद, गुवाहाटी व सूरत के लिए सीधी उड़ान और गोड्डा से गुजरात, राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में

0: कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।
0: रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की फीस वापस करेगा। कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण फीस वापसी की तैयारी की जा रही है।
2: हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फी जो है जो ली गई थी उसको वापस कर दिया जाएगा और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरायकेला में मां बेटी की मौत और रांची की घटनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों की नियमित निगरानी और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका के बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने झारखंड सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याचिका में खनन के कारण स्थानीय लोगों में कैंसर, त्वचा और श्वसन रोग तथा भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषण की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार अम्बष्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मुफ्त इलाज और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल हटिया आदित्यपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू तथा हटिया सांकी मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ गोमो स्टेशन से होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन 8 और 9 मई को रद्द रहेगा। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने दिल्ली सहित साहित्य अकादमी सभागार में रांची की साहित्यकार वीना श्रीवास्तव को अनिता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2026 में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। उनकी कहानी अब आप सुनिए को देश भर से आई 175 प्रविष्टियों में से भाषा, संवेदना, शिल्प और सामाजिक सरोकारों के आधार पर चुना गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों और एक ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से छीनी गई चेन से बनाई गई 3 सोने की अंगूठियां, स्कूटी और नकद राशि बरामद की गई है।
3: स्कूटी सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक दल का गठन किया गया, उनको पकड़ने का कार्य किया है। रबरी में हमको 2-3 चीजें प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कूटी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, 15,000 रूपए कैश प्राप्त हुए हैं, 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई वो भी हमें बरामद।
0: जमशेदपुर में झारखंड क्षेत्रीय युवा संघ ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शंखनाद और माल्यार्पण के साथ

0: होगी।
1: 487वां जन्म जयंती है। अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति मर मिटने के ये जो जज्बा रहा है, वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मरीन ड्राइव गोलचक्कर पे 5 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,500 रुपए है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के दौरान मारपीट और लाइसेंस से राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीनी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद की है। क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्र संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी गिरिजा देवी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गजल। पहला गजल है भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो आइए इस चार दिन की जिंदगी को खुशी से जी लें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुना गजल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज़ और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर एक अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में दिल्ली से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला

0: सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सामाजिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल

0: रजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है जय भारती। कार्यक्रम को शुरू करते हैं फना फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, शब्दबद्ध किया है प्रशून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनिए उदित नारायण की आवाज में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अब आप सुनिए बॉर्डर टू सिर्फ ये गाना। इस गाने को गाया है सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने। इसे शब्दबद्ध किया है मनोज मुंताशिर शुक्ला ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

अब आप सुनिए चक दे इंडिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मैरियाना डी क्रूज ने। शब्दबद्ध किया है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
2: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें, जल को धन मानकर रोकें, जल जीवन है, जल है तो कल है।
1: वहीं सीएम पीडीआई के महाप्रबंधक वीके पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस पहल के जरिए युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां की शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और समृद्ध विरासत का गहन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 6000 से अधिक युवा 130 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2,17,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लाभार्थियों की संख्या अब 8,96,00,000 से अधिक हो गई है। झारखंड के बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आज रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर की इस दौड़ को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी की यात्रा और भविष्य के संकल्पों पर अपने विचार साझा किए।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को पदक और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। जमशेदपुर के कालीमाटी रोड पर कल देर रात भीषण आग लग गई। यहां बिक्री के लिए खड़ी 2 कारें अचानक लगी आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी को कड़ी सजा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर निवासी 24 वर्षीय राज हिमब्रम को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का

0: जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं हूँ कृति पौराणिक। प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अंताक्षरी का खेल शुरू ही होता है म अक्षर के गाने से, तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अंताक्षरी।

0: अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और अब आप सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अब आप सुनिए मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: हवा हवाई
2: अभी भी भी भी भी भी भी।

अब आप सुनिए गर फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने, शब्दबद्ध किया है सबीर अहमद ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

किशोर कुमार की आवाज में अब आप सुनिए कालिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अब आप सुनिए जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने, शब्दबद्ध किया है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एक विशेष एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर स्थित घर पर आज पुलिस ने बड़ी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के साथ अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई पूरी की। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय से प्रोजेक्ट पहल की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। पाकुड़ के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कटे होंठ और तालू वाले बच्चों के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। आरसीएच पदाधिकारी डॉ एस के झा ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 25 बच्चों की स्क्रीनिंग की। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय सीनियर रैंकिंग नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए साहिबगंज के 4 पहलवानों का चयन हुआ है। इसमें महिला वर्ग में रूपाली कुमारी और रोशनी कुमारी, जबकि पुरुष वर्ग में गुंजन यादव और अंगद कुमार झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम।

0: यानी दुनिया के जो आयशो आराम जो अपना समझते हैं, तो ये तो मेरा असल अपना है ही नहीं, क्योंकि जब हमको इस दुनिया से रुखसत होना होता है तो ये कुछ लेके हम नहीं जाते हैं। और जो मेरा जिसको हम नहीं समझते हैं कि अच्छे काम जिससे कि इंसानियत को फायदा पहुंचे और हम ईश्वर की एक एक बात को, अल्लाह की एक एक बात को मानने वाले हो जाएं, तो इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते हैं। असल में यही हमारा मरने के बाद काम आने वाला है। इस कलाम से इसी बात का इजहार होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सोच पूरी रूहानियत इसमें नजर आती है कि रूहानियत उनकी सोच में थी। हिदायतुल्लाह, बातें अब बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो थोड़ा लिए चलते हैं अपने सामईन को नगमे की तरफ और सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 होने को हैं।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर श्रमिक लोक। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचारों का। छह बजकर दो मिनट पर खेती बारी, जिसके पश्चात 6:32 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा। 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का। रात्रि 8 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8:30 सुर्खियों में।

8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनहरी यादें, जिसके तहत आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। 10:30 बजे का समय होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सितार पर राग चांदनी कल्याण, कलाकार हैं निशात खान। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राजा के इस गीत के साथ। गायक हैं अलका याग्निक और उदित नारायण, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म फना से। गायक हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल। संगीत जतिन ललित का है और बोल हैं प्रसून जोशी के।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अब जिस गीत को सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म जूधा अकबर से।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सांझ सरगम कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में बिजली और पानी के संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रूपये का बंदरबांट कर लिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंसा करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने सत्र 2026-28 के लिए अपने प्रतिष्ठित एग्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कोर्स विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है। विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप मंडल ने बताया कि 2 वर्षीय इस कार्यक्रम की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज साल 2017 की होमगार्ड बहाली में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे आत्मदाह जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। देवघर जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। उपायुक्त शशि प्रकाश

0: के निर्देश पर एसबीआई आरसीटी में आगामी 11 मई से गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट का 12 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ एडिथ।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने और मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित करने का भी अवसर है।
0: ये दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करेंगे और समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाएंगे।
0: और दोस्तों, रेड क्रॉस का मूल मंत्र है मुस्कान के साथ सेवा। हमें भी बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और दोस्तों, रेड क्रॉस एक विश्व प्रसिद्ध मानवीय संगठन है, जिसका उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना है। इसकी स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के समाज सेवी हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और 1859 में सोलफेरिनो के युद्ध में हजारों घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद करे, और इसी विचार से रेड क्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई।
1: जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का प्रतीक सफेद पृष्ठभूमि पर 5 बराबर वर्गों से बना एक लाल क्रॉस है, जो सेवा और मानवता का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ यह संगठन विश्व भर में फैल गया और आज लगभग हर देश में इसकी शाखाएं काम करती है, और हमारे देश में इस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी।
0: और दोस्तों, अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो रेड क्रॉस युद्ध के घायल सैनिकों और नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाना, दवाइयाँ और आश्रय भी उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ यह संस्था रक्तदान शिविर आयोजित करती है, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देती है और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य भी करती है। और कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी रेड क्रॉस ने लोगों तक आवश्यक सहायता पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: और दोस्तों, रेड क्रॉस मानवता, निष्पक्षता और सेवा जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है। यही कारण है कि ये संगठन आज पूरी दुनिया में सेवा और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए हम आपको बताते हैं इतिहास में आज के दिन कुछ घटित जानकारियाँ।
1: 8 मई का दिन इतिहास में मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जाना जाता है। 1945 में इसी दिन जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था।
0: और दोस्तों 1886 में कोका कोला का आविष्कार अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन एस पैम्बर्स्टन ने कोका कोला का विकास किया।
1: जी हाँ दोस्तों, 1929 में गिरिजा देवी का जन्म, जो कि भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी।
0: और 1999 में नाटो द्वारा बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर हमला किया गया था।
1: 2000 ईस्वी में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराज पाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए।
0: और इसी के साथ 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कुछ रोचक तथ्य जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और सुनकर हंसी भी आएगी। तो पहला रोचक तथ्य ये है कि हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता,
1: जंप नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुतुरमुर्ग की आंखें उसकी दिमाग से बड़ी होती है, इसकी एक लात शेर को भी मार सकती है। और तितलियां किसी भी चीज का स्वाद अपने पैरों से चखती है।
0: और दोस्तों 1700 के दशक के अंत तक यूरोप में बहुत से लोग टमाटर खाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि टमाटर जहरीली है, क्योंकि अमीर लोग जब पीतल की प्लेट इस्तेमाल करते थे तो टमाटर का एसिड उस पीतल के साथ मिलकर जहर बना देता था।
1: और 19वीं सदी में जब कैमरे नए नए आए थे, तब लोग फोटो खिंचवाते समय स्माइल करने के बजाय प्रून्स कहते थे, ताकि उनके होंठ छोटे और गंभीर दिखे, क्योंकि उस समय मुस्कुराना अच्छा नहीं माना जाता था। और आज के समय में लोग चीज़ बोलते हैं ताकि वे मुस्कुराते हुए दिखें।
0: और दोस्तों बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन असल में अंधेरे से डरते थे, शायद इसी वजह से कि उन्होंने रोशनी करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो दोस्तों बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आइए हम जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। सिटी यूनियन बैंक ने आर विजय आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। और साथ ही जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में अंतिम मील तक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर फिनटेक प्लेटफॉर्म इजी पे के साथ साझेदारी की घोषणा की है।
1: एनसीईआरटी ने स्कूलों में दिव्यांगता की शीघ्र पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया। यह एक आधुनिक उपकरण है जिसे स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की पहचान को शुरुआती चरण में करने के लिए डिज़ाइन किया है। आईआईटी मद्रास ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना पहला संयुक्त राज्य केंद्र मेलोन पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित

0: तो एडिथ, क्या आपने कभी रक्तदान किया है?
1: हाँ अंकिता, मैंने पिछले साल पहली बार ब्लड डोनेट किया था। शुरू में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ।
0: अच्छा एडिथ, और इसका प्रोसेस कितने देर में पूरा हो गया था?
1: लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था।
0: और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ सकती है, क्या आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ था?
1: ये सिर्फ गलत फहमी है अंकिता, हेल्दी इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है। थोड़ा रेस्ट और पानी पीने से सब नॉर्मल रहता है। हमारा शरीर कुछ ही दिनों में ब्लड की कमी पूरी कर देता है, और कई लोग डर की वजह से भी रक्तदान नहीं करते हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि ब्लड डोनेट करने से सिर्फ मरीज को ही नहीं, दान करने वाले को भी फायदा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इससे स्वास्थ्य जांच हो जाती है और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ता है। और रक्तदान तो सिर्फ एक दान नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। एक यूनिट खून किसी दुर्घटना पीड़ित, ऑपरेशन वाले मरीज और भी बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति की जान बचा सकता है, क्यों एडिथ?
1: बिल्कुल, तो आज के समय में हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। अगर हर स्वस्थ व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार भी रक्तदान करें, तो शायद किसी को खून की कमी से अपनी जान ना गंवानी पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों आज की इस बातचीत से हम बस यही कहना चाहते हैं कि रक्तदान कोई साधारण काम नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन ज़रूरत के समय एक बूंद खून सिर्फ इंसान ही इंसान को दे सकता है।
1: बिल्कुल अंकिता, किसी अस्पताल में कोई माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है, या कहीं कोई दुर्घटना पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, तो कहीं कोई मरीज हर महीने खून का इंतजार करता है, ऐसे समय में एक ब्लड डोनर किसी फरिश्ते से कम नहीं होता है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों हमें ये समझना होगा कि रक्तदान करने से हमारा कुछ कम नहीं होता बल्कि किसी की जिंदगी में उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जब भी मौका मिलेगा हम रक्तदान जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों, परिवार और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: तो दोस्तों हमें बातें तो और भी करनी थी, लेकिन हमारे युववाणी का समय हो चला है, तो मैं यानी कि एडिथ
0: और मैं आपकी दोस्त अंकिता
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: आज का दिन समर्पित है उन लोगों को जो बिना भेदभाव, निस्वार्थ और सेवा भाव से मानवता की सेवा करते हैं। 8 मई यानी आज विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है, जो हमें इंसान से प्यार करना सिखलाता है। आप सभी एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से प्यार करें और सभी को प्यार का पैगाम दें। इसी बात के साथ हम शुरुआत करते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोग। मैं हूँ आरती और मेरे साथ है महिमा। सभी साथियों को आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार आरती और सभी श्रमिक साथियों को महिमा का भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे और साथ ही मौसम का मजा भी ले रहे होंगे। और आरती, जो भी आपने प्रेम का संदेश बांटना सिखलाया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संदेश को हम चाहते हैं कि जितने भी साथी हैं जो सुन रहे हैं, सभी एक दूसरे तक प्यार बांटना जरूर सिखलाएं।
0: बिल्कुल महिमा, क्योंकि ये प्यार और मोहब्बत ही है तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को सुकून दे पाते हैं। तो मानवता की सेवा के लिए बनाया गया रेड क्रॉस समिति शांति का संदेश फैलाता है। अगर वर्तमान समाज की बात करें तो लोगों की आपस में ही नहीं बनती, कह सकते कि इंसान इंसान का ही दुश्मन बन जाता है। लोगों के अंदर एक दूसरे के जलन की भावना आ जाती कि वो कैसे मेरे से आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गया। मतलब ये सारी चीजें इस तरह से लोगों के अंदर हावी हो गई है ना, कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होते लोग चले जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और आजकल तो बहुत सारी, ये तो पड़ोसियों में ही देखते हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सी ऐसी परेशानी होती है, एक दूसरे से नहीं बनती है। किसी की तरक्की देख करके अच्छा नहीं लगता है लोगों को। लेकिन इसके साथ ही हम अपने साथियों को बतलाना चाहेंगे कि रेड क्रॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समिति के जो स्वयं सेवक होते हैं, वो बिना भेदभाव के, युद्ध हो गया, महामारी या कोविड के समय भी, या प्राकृतिक आपदा जैसे समय में लोगों की सहायता करते हैं। और यह जो विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, ये शांति और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह पैगाम देता है कि एक दूसरे से आप निस्वार्थ भावना से प्यार करें।
0: बिल्कुल, मानव सेवा ही तो सच्ची सेवा है। और यह सेवा सिर्फ किसी संस्थान या समिति तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह तो हर इंसान को करना चाहिए। हर धर्म में मानव सेवा को ही मूल आधार माना गया है। हिंदू धर्म में नर सेवा ही नारायण सेवा कहा गया है, तो ये कितनी बड़ी बात है महिमा
1: जी। और इस्लाम धर्म में जकात दान को प्रमुखता से माना गया है। तो वहीं ईसाई धर्म के बारे में बात करें तो ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि पड़ोसियों से प्रेम रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सिख धर्म में कहा गया है कि मानस की जात सबो एके पहचानवो, जिसका मतलब है सारी मानव जाति को एक ही तरह पहचानो। बौद्ध और जैन धर्म में भी इंसानों के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखने के लिए कहा गया है महिमा।
1: बिल्कुल। और साथियों, इंसान को बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक रूप का महत्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग रंग, जात पात और बाहरी सुंदरता को देखकर के बहुत ही आकर्षित होते हैं, पर उन्हें कहना चाहेंगे कि जो बाहरी सुंदरता है उससे ज्यादा आंतरिक सुंदरता का महत्व होता है। कि हम कैसे बात करते हैं, किससे क्या व्यवहार करते हैं, और हमारे चाल चलन से कैसे लोग प्रभावित होते हैं और एक दूसरे के साथ में अच्छा से रहते हैं।
0: कितनी अच्छी बातें तुमने बताई। और आजकल के लोग तो इसी बाहरी दिखावा में हो जा रहे हैं जो उन्हें कुछ पल की ही संतुष्टि देता है। मतलब कहते हैं मटेरियलिस्टिक सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं। असली खुशी और संतुष्टि तो लोगों की मदद करने से ही होती है। प्यासे को पानी पिलाकर, भूखे को भोजन खिलाकर जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो 5 सितारा होटल में बैठकर कभी नहीं मिल सकती है।
1: बहुत बड़ी बात कही आती है आपने।
0: और महिमा, मैं बता दूं कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद कर, कि किसी के चेहरे पे मैं थोड़ी सी मुस्कुराहट ला कर आऊं। तो इसके लिए लोग मुझे कई बार ताने भी मारते हैं कि भाई ऐसा भी किया है, तो मैंने कहा कि एक ऐसा नशा कि एक बार करके देखो फिर आपको पता चलेगा।
1: बिल्कुल। और इस सेवा को, मतलब मानव सेवा को अगर करना जो शुरू कर दिया, जो संतुष्टि मिलेगी ये जीवन भर के लिए होती है।
0: बिल्कुल।
1: और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो रास्ते में जाते हैं गर्मी के समय में, जो पंछी होती है उनको पानी पिलाते हैं, जो भूखे होते हैं उनको भोजन खिलाते हैं और जरूरतमंद की हेल्प भी करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो सोशल मीडिया के इस दौर में जीते हैं और दिखावे के लिए, फोटो के लिए, वीडियोस के लिए लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। पर ऐसे साथियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे

0: सेवा ही क्या जो बस दिखावे की हो, ऐसी
1: बिल्कुल
0: सेवा करनी चाहिए जो एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं
1: बिल्कुल,
0: चले।
1: कितनी अच्छी बात कही है तुमने। और जब आप सेवा करें तो जगह देख कर ना करें, जहां भी जरूरतमंद नजर आए उनकी सहायता जरूर करें। श्रमिक साथियों, सिर्फ बाहर ही नहीं, कार्यस्थल में भी आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है।
0: बिल्कुल, आज के समय लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं पर इंसान के आंसुओं को नहीं पोंछते हैं। साथियों, जहां आपको दुखित व्यक्ति मिल जाए, उसकी सेवा और मदद में जुट जाए, आपकी एक सहायता किसी जरूरतमंद को ऊपर उठा सकता है।
1: और मनुष्य की पहचान भी तो यही है जो उसे इंसान बनाती है। पता है साथियों, जब आप एक गिरते हुए का हाथ पकड़ेंगे ना, तो कभी आप गिरेंगे तो आपको भी कोई जरूर थाम लेगा।
0: और यही तो जिंदगी का संतुलन भी है।
1: बिल्कुल, तो संसार की धन संपत्ति से ज्यादा मानव सेवा ही आपको सुकून दे सकता है। इसलिए कोशिश करें कि मानव सेवा को अपना धर्म बना ले और सभी को प्रेम का संदेश दें। और महिमा, अब बढ़ते अपने अपने कार्यक्रम की ओर। आज हम सुनेंगे वार्ता और विषय होगा असंगठित मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या उनके कानूनी प्रावधान है। वार्ताकार है अभिषेक कुमार, तो सुनते हैं ये वार्ता।
2: हमारे देश के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड सरकार ने श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संगठित तथा असंगठित मजदूरों के लिए भी झारखंड सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को चाहिए कि वे अपना निबंधन जरूर कराएं। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। देश की कुल कार्यशील आबादी का लगभग 94% असंगठित श्रमिक का है। संगठित श्रमिक, जिनका प्रतिशत 6 से कम है, को नियमित रोजगार, वांछित एवं अनुकूल कार्य दशाएं तथा विभिन्न विकल्पों के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि असंगठित श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार, मनोनुकूल कार्य दशाएं तथा सामाजिक सुरक्षा, तीनों का अभाव रहता है। भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में निर्माण श्रमिक कहा जाता है, भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। निर्माण श्रमिकों के लिए विशिष्ट अधिनियमों की आवश्यकता है। यद्यपि निर्माण श्रमिकों के लिए एक सामान्य श्रमिक के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विभिन्न कानून पूर्व से प्रभावशील थे, तथापि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण तथा विशिष्ट स्वरूप की सेवा शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अधिनियम की धारा के अनुसार निर्माण श्रमिक से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य, वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो, किंतु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। ठेकेदार तथा ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, टाइल्स, खपरे, मुरम, मिट्टी जैसी निर्माण प्रदाय करने वाले व्यक्ति एवं स्वयं की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भी निर्माण की परिभाषा में शामिल नहीं है। श्रमिक साथियों, निर्माण श्रमिकों का वर्गीकरण कोटि के कामगारों के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में भवन एवं सनिर्माण कार्य से जुड़े 37 श्रेणियों को निर्माण श्रमिक के रूप में शामिल किए गए। पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाला, राजमिस्त्री या ईंटों पर रद्दा करने वाला, पोताई करने वाले, पेंटर, बढ़ई फिटर या बार बेंडर, सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुएं खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, पेमैन या मिक्सरमैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, कुएं से गाद हटाने वाले, गोताखोर, हथौड़ा चलाने वाले, छप्पर डालने वाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीरने वाले, कोल तार मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, रोलर चलाने वाले, बड़े यानदारे जैसे मशीनरी पुल का कार्य लगे खलासी, चौकीदार, मोजाइक पॉलिश करने वाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर पत्थर कर्मकार, सड़क कर्मकार, चट्टान तोड़ने वाले कर्मकार, सन्निर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी कार्य करने वाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगा कर्मकार, बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया के नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, कारखाना अधिनियम 1948 का केंद्रीय अधिनियम के अधीन ईंट बनाने में लगे कर्मकार, पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, श्रमिक औजार सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ट्रेड के लिए औजार की सहायता हेतु राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कूली, पेंटर आदि को ब्रांडेड कंपनियों के उचित गुणवत्ता के औजार किट उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रमिक साथियों, झारखंड सरकार ने ई श्रम कार्ड से जुड़ी योजनाएं और अपने ने श्रमिकों के लिए इसका निबंधन करा दिया। सरकार की श्रमिकों के लिए योजनाएं इस प्रकार है। झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना झारखंड सरकार के श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने शुरू की है। यह योजना 18 से 60 साल के सभी पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देती। मेधावी पुत्र अथवा पुत्री छात्रवृत्ति योजना इस प्रकार है। इस योजना के अंतर्गत स्नातक और स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। एक्सेल कार्यक्रम इस योजना में 10+2 पास या विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को लक्षित करती है। इस योजना के तहत कॉलेजों में पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ई श्रम कार्ड से जुड़ी कुछ और योजनाएं इस प्रकार 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाभार्थी को कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन मिलती है। अगर पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें 6,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत सरकार श्रमिक साथियों को 2,00,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा करा रही है। श्रमिकों के अलावा सरकार रिक्शा चालक करके दुकानदार निजी चालक घरों में काम करने वाली महिलाएं दुकानों में काम करने वाले को भी इसका लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स जमा करने वाले व CPS NPC EPFO से जुड़े लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका पंजीयन लोक सेवा केंद्र पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता। आवेदन के लिए आधार नंबर मोबाइल नंबर और बैंक का खाता नंबर होना जरूरी है। ई श्रम कार्ड बनने के बाद बच्चों को छात्रवृत्ति साइकिल सिलाई मशीन दैनिक काम के लिए उपकरण आदि मिलेंगे। भविष्य में राशन कार्ड कुल इससे लिंक किया जाएगा। इससे देश के किसी भी राशन दुकान से आप राशन भी ले सकेंगे। झारखंड सरकार की ई श्रम कार्ड योजना का लाभ सभी श्रमिक साथियों को उठाना चाहिए। श्रम विभाग व अन्य स्तर से हर गांव और वार्ड में इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार निबंधित लाभुकों के लिए सिलाई मशीन सहायता योजना के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका। कुल 74 लाभुकों को सिलाई मशीन का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के मध्य में लगभग 4,32,900 रुपए व्यय किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत रांची जिले में निबंधित महिला लाभुकों के मध्य सिलाई मशीन का वितरण किया गया एवं इस योजना मद में कुल 99,450 रुपए का व्यय किया गया है। जमशेदपुर जिले में 57 सिलाई मशीन का वितरण निबंधित महिला लाभुकों के मध्य किया गया व इस मद में 3,33,450 रुपए राशि का व्यय किया गया है। शेष जिलों में भी निबंधित लाभुकों को योजना से आच्छादित किए जाने संबंधित कार्रवाई चल रही है। सिलाई मशीन सहायता योजना के प्रावधान इस प्रकार, इसके अंतर्गत बोर्ड के निबंधित महिला लाभुकों को बोर्ड के द्वारा उचित प्रशिक्षण के उपरांत उचित गुणवत्ता की सिलाई मशीन दी जाएगी। योजना की पात्रता इस प्रकार है, निबंधित महिला श्रमिकों के लिए उम्र 35 से 60 वर्ष के आयु के मध्य हो। योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है, आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है। सिलाई मशीन सहायता योजना व साइकिल सहायता योजना में से लाभुक एक ही योजना का लाभ ले सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि झारखंड सरकार की विकासशील योजनाओं के द्वारा हमारे सभी श्रमिक साथी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड सरकार की श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं लेकर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अवसर का लाभ उठाने में श्रमिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: तो महिमा, हम ये जो सुन रहे थे वार्ता, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं कल्याणकारी हमारे असंगठित श्रमिकों के लिए, उसकी जानकारी दी गई। तो साथियों, आपको आपके लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी कानूनी प्रावधान है, उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका लाभ उठा के आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जो जानकारी दिया गया है, वो जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरे साथियों को भी ज़रूर से बतलाना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो महिमा, आपको पता है कि हम आकाशवाणी की वजह से ही अपने श्रमिक साथियों से रूबरू हो पाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हैं, है ना?
0: हाँ बिल्कुल आरती, वास्तव में आकाशवाणी भारत की आवाज, भारत की पहचान है। यह देश का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है।
1: बिल्कुल साथियों, यह एक ऐतिहासिक विरासत है। इसकी स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। 2026 में यह अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और आकाशवाणी 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम को प्रसारित करता है। देश भर में इसके 500 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं जो देश की सांस्कृतिक

0: प्रत्येक सामाजिक और भाषाओं की विविधता को दर्शाते हैं।
1: बिल्कुल, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे आकाशवाणी नाम दिया था, जिसका अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। 1957 से शुरू हुई विविध भारती सेवा इसके सबसे प्रसिद्ध वाणिज्यिक सेवाओं में से एक है। आकाशवाणी समाचार, सूचना, संस्कृति और मनोरंजन के माध्यम से देश के सुदूर कोनों तक विश्वसनीयता के साथ अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है।
0: बिल्कुल महिमा, हम जब छोटे थे बचपन से हमें याद है कि हम हवा महल सुन के डिनर किया करते थे, मतलब कितनी जानकारी, ज्ञानवर्धक बातें, इतना मनोरंजन। तो सचमुच में आकाशवाणी जो है अपने आप को, सारी दुनिया को समेटे हुए अपने आप में है। तो मनोरंजन की जब बात चल पड़ी है तो तुम हमें एक क्या गीत नहीं सुनवाओगी?
1: बिल्कुल,

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: भी शाम तो सचमुच में बहुत मस्तानी है महिमा, जब चिलचिलाती धूप, इतनी कड़ी, इतनी ज्यादा गर्मी और उसके बाद बारिश आना, सचमुच में एक बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला पल होता है और हम इस मौसम को एंजॉय तो कर ही रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। महिमा, कौशल निर्माण व्यक्ति के ज्ञान, तकनीकी क्षमता और व्यवहारिक योग्यताओं को निखारना ताकि वह न केवल रोजगार योग्य बने बल्कि सम्मानजनक जीवन भी जी सके, यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का बहुत ही उत्तम मार्ग है ना?
3: और तकनीकी कौशल सीखने से युवा वर्ग न केवल नौकरी पाने के योग्य बनते हैं बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर आत्मगौरव भी महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: जब भी जो हमारे साथी है अपनी जीविका अपनी प्रतिभा के बल पर वो मतलब कमाते हैं तो उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और वे गरिमापूर्ण जीवन की नींव भी रखते हैं।
2: जाहिर सी बात है कि हम आत्मनिर्भर तभी होंगे जब हमारे हाथ में हुनर होगा, हमारा कौशल उन्नत होगा और तभी हम काम को अच्छे से करेंगे और काम में उन्नति होगी हमारी
3: और हुनर से पहचान भी मिलती है।
2: बिल्कुल। तो एक कुशल व्यक्ति न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है जिससे समाज में सम्मान भी मिलता है। और सही कौशल विकास केवल तकनीकी नहीं बल्कि मूल्यों से भी जुड़कर हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है।
3: आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कुशल व्यक्ति एक बेहतर नागरिक बनता है और दूसरों को भी बनाता है। और यह जो कौशल है वह एक पूंजी है जो व्यक्ति को रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बना सकती है।
2: ये बात उन्हें बहुत पते की कही,
3: जिससे जीवन में सम्मान और स्वाभिमान का समावेश होता है।
2: महिमा, इस बात से मैं यही कहना चाहूंगी कि साथियों, आप ना आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संतुष्टि आपको नहीं होनी चाहिए कि बस मैं जहाँ हूँ वहाँ टिकूं। हमेशा अपने अंदर ये चाहत होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए कि मुझे और कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ना, अपग्रेड अपने आप को हमेशा करते रहना चाहिए। और स्टॉप होकर अगर हम चलेंगे तो जहाँ है हम वहीं रह जाएंगे, है ना? तो हमेशा सीखने की जो भावना है, जो लालसा है, वो अपने अंदर हमेशा जागृत करके रहें। और महिमा, आगे हम ये बताएंगे कि हमारे साथियों के लिए और क्या विशेष है
3: आज। अभी और हम बात करेंगे ट्रैफिक नियमों के बारे में, क्योंकि ये जो ट्रैफिक नियम होते हैं वो हमारे साथियों के लिए बहुत ही विशेष है और जीवन रक्षक भी होते हैं।
2: बिल्कुल। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जीवन का सम्मान भी, इसलिए साथियों ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। गाड़ी चलाते समय आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनें। और हाँ, नशा करके आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि कहते हैं ना कि नशा ही नाश का द्वार होता है।
3: जी, और जब आप सड़क पर चलते हैं साथियों तो बाएं साइड ही चले, अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो बाएं साइड ही जो पैदल चलते हैं उनको चलना चाहिए। और अगर आप दो पहिया या चार पहिया वाहन से कहीं जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो स्पीड है वो लिमिट में रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के बाइक का इस्तेमाल करते हैं और स्पीड इतना ज्यादा स्पीड चलाते कि वो आसपास नहीं देखते कि कौन जा रहे, कौन बुजुर्ग जा रहे, कौन बच्चे जा रहे हैं।
2: बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कई लोगों के अंदर, जो खास करके युवा वर्ग की बात करें, तो स्पीड चलाना उनकी शान की बात होती है। तो साथियों, स्पीड चलाना शान की बात नहीं पर गाड़ी समझदारी, संयम और नियम से चलाना ही शान की बात है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसके लाइट का पालन करें, मोबाइल का इस्तेमाल वाहन चलाते समय बिल्कुल भी ना करें
3: और कोशिश करें कि हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल ना करें। और जब भी आप रास्ते में जा रहे हैं, वाहन चला रहे हैं और आपके पीछे में एम्बुलेंस आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे रास्ता जरूर दे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है।
2: यह आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ

0: महिमा, ये तो भी मौसम सच में मस्त हो गया है,
1: झूमता हुआ।
0: झूमता हुआ। तो चलो इस वादे के साथ हम अपने साथियों से फिर से मुखातिब होंगे, अपनी दोस्त आरती
1: और महिमा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान

0: स्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साहिबगंज जिले के किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस बैठक में पिछले वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा और नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि एकत्रित रक्त का उपयोग जिले के थैलेसीमिया मरीजों और आपातकालीन स्थिति में भर्ती रोगियों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के हमार बट्टे बहुत बहुत जोहार, और शशि भाई और के भी बहुत बहुत जोहार।
0: सब सुनो या भाई बहन उनके जोहार, अरविंद भाई और के भी जोहार। कैसे हाल चाल है?
1: एकदम हालचाल नगद है शशि भाई। यार देखो
0: एकदम
1: गर्मी बर संगे संगे
0: गर्मी में जार कर मजा ले से का
1: एकदम सुपट का थी पानी जे बहुत जोर बरखा आवत है और रात के नहीं ओढ़े पड़ जाते शशि
0: भाई। तो है कहते कि दिन में गर्मी पानी अलग से बरसात कर जा तले रात के जार कर तीनों मौसम कर मजा है खेलने हाँ। लेकिन खास करके मजा कर संगे ध्यान भी रखे है कि इखन तबीयत मन खराब होकर ज्यादा संभावना रहे ऐसा
1: हाँ,
0: नहीं किसी मौसम कर मजा कर में शरीर के नुकसान है।
1: एकदम ठीक कहली रो रे अपन जब भी मौसम बदले ला शशि भाई तो हमारे मन के अपन जीव सवांग ऊपरे मगरा ध्यान रखे है। खास करके छोट छोट छुआ मन उमन कर जे शरीर कर
0: हाँ,
1: बनावट
0: हाँ,
1: है उमन कर इम्यून सिस्टम जे के हमारे मन कहिला रोग से लड़े कर क्षमता जे होला से कम होला तो मौसम बदले ला असर उमन में होवेला।
0: और बड़ बुजुर्ग मन में भी इसने हो जे छोट छुआ मन है उतने तो हो मन के तनी सुन मौसम में ध्यान देवे
1: एकदम। और सुपट रोरे कहा थी देखो हमरे मन खेती हर ही तो हमरे मन कर जिसन जीव सवांग बगड़े ला नहीं शशि भाई उसने हमरे कर जे माटी है वो भी बीमार पड़ेला तो हमरे मन खेती हर ही तो अपन शरीर कर संगे संगे माटी कर भी हाल समाचार लेते रहे के चाहिए हमरे के
0: ठीक है कहले।
1: और देखो हमरे मन का होला नहीं कि उपज बहुत बगरा से बगरा लेवे कर कोशिश में हमरे मन का करेला शशि भाई की रासायनिक खाद कर अंधाधुंध प्रयोग करे शुरू कर दे ऊपर से माटी है कि धीरे धीरे बीमार होते जाते
0: हाँ एते बगरा खाद कर प्रयोग करते लेकिन अखन कहते जैसे पानी बरखा कर बात करते गर्मी के दिन में बरसात के दिन में भी जब खेती में लागत रहे पानी बरखा होत रहे तो देखो ने कि दोइन में धान लागल रहते सैकड़ों में मछली मन भेटात रहे लेकिन आप देखो एते प्रयोग करल जाते हैं रासायनिक खाद का जगह चलते हम नहीं बिटाले और मछली मन के संगे संगे और कहते कि छोटे छोटे केचुआ का

0: लोगों से
1: जोक्टी
0: जोक्टी से भी है, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। जे की माटी ले बहुत लाभदायक रहे, फायदा करत रहे
1: एकदम। मतलब ये कहो नी कि किसान कर वो सबसे मित्र कीट हो ला नहीं।
0: हाँ हाँ।
1: और सुपर टूरे कहा थी कि एक तरह से
0: हटा थी। हाँ। फेट के
1: भगवाई देती हाँ। मुराई देती है हमरे मन। तो सुपर कहा थी रोरे कि जे माटी भीतरे कर जे मतलब वो ये हो ला वर्मी जे के हमरे मन कहिला, चाहे उके केचुआ कहू, चाहे उके जोकटी कह लो, चाहे जोंक हमरे मन कहिला, नहीं कि जोंक धरे ला जब हमरे मन कादो में उतरत रही तो डरात रही छोट छोट बेरा, तो वह हके तू का करेला कि जोताई कर काम करेला, माटी भीतरे कर माटी के बाहरे करेला।
0: ठीक कहली, जैसे ट्रैक्टर से या तो हर से हमरे जे माटी के जोतिल बनाई ले खेत के तो का कहना बड़ बड़ रूप में होला, लेकिन जब केचुआ से होल तो एकदम सूक्ष्म मतलब छोटा रूप में, और छोटा रूप में होले तो पूरा माटी ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे पूरा का कहना बन जाएला काम कर जे।
1: एकदम ठीक कहते, रोटा बेटर जैसे हम घूमेला नहीं वह काम केचुआ करेला। एकदम सुपर भाई। तो हमरे का सबसे मित्र कीट होला वो, और उकर संरक्षण बहुत जरूरी है। संगे संगे देखो वो तो खैर प्राकृतिक रूप से हो गेलक शशि भाई, अब हमरे मन आपन से वर्मी खाद तैयार कर सकीला, वर्मी कर जुगाड़ कर लो, वर्मी रोर जितना भी कृषि विज्ञान केंद्र है उकर में भी मिलेला, चाहे कोई भी किसान अगर पहले से वर्मी कंपोस्ट अगर बनाते तो उकर से भी एकाइत किलो भी अगर उरे वर्मी ले लाना थी और बेड उकर में बनाए के अगर दे देती तो आवे वाला एक दो साल में रोठिना लाखों कर संख्या में वर्मी तैयार हो जाए, और उकर से वर्मी खाद भी रोरे बनाए सकीला। और खाद जब बन जाए शशि भाई, तो जब उकर क्वालिटी हम तो खुद से बना ही से ले हम बता थी, एकदम जैसा हमरे मन चाय पत्ती के देखी ला नहीं, उसने छोटा छोटा दाना चाय पत्ती नियर, और समझो कि गोबर और जे भी अपशिष्ट पदार्थ जे के कहे ना हमरे मन फेंका बेकार में फेंक देवीला, से के मिलाए के जब रोड़े खाद बनाती तो उकर जब सेंट के रोड़े सुंघवनी तो एकदम बड़ा खुशबूदार होवेला वो खाद, और जितना देखे के लिए सुंदर, जितना सूंघे के लिए बेस, उतना हमरे घर खेती ले भी बढ़िया।
0: जैसे देखो गर्मी के दिन में पूरा माटी जब एकदम रौद में पूरा सूख जाएल, एकदम भुरभुरा हो जाएल, और वह बेरा तनी सुन पानी आवेल, तो से बेरा का जे महक है।
1: हाँ। सोना सोना महक एकदम खुशबू। तो भाई हमरे मन के अपन माटी कर जिसन जिसन हमरे मन अपन स्वास्थ्य में ध्यान देवीला, मौसम बदलेला तो अपन स्वास्थ्य में ध्यान देवीला, उसने हमरे मन के बीच बीच में माटी कर जे स्वास्थ्य से के बनाए के रखना जरूरी है, और उकर में वर्मी कंपोस्ट कर बहुत बड़ा भूमिका है। और जे भी किसान से हम भेंट करीला शशि भाई, खुद हम भी किसान ही तो जानी ला इकर लाभ के, मतलब एक साल तो रू के पता नहीं चली, लेकिन दूसर साल से रो खेत कर उपज जो है नी से अचानक से बढ़ जाएला, और इके कहल जाएला नी कि काला सोना, एकदम काला सोना है भी। और तो भाई इकर प्रयोग हमरे मन के जरूर से जरूर करे के चाहिए, ताकि अपन खेती के बढ़िया से बनाए के रखो, और जे भी उपज है उके दुगुना करे कर हमरे मन के दरकार है आज के समय में। हाँ, और आधुनिक खेती बहुत जरूरी है शशि भाई आज के समय में।
0: हाँ, समय बदलत है तो समय के अनुसार हमरे मन के खेती बारी में कर भी रूप के बदले के चाहिए
1: एकदम। तो शशि भाई आगे भी हमरे मन बतियाते रहब, चलो तो कार्यक्रम कर और करीला एक ठो नागपुरी लोकगीत से, कलाकार हैं देवदास विश्वकर्मा और उनका संगीत मन।

शशि भाई, एक ठो सूचना है और बहुत कारगर सूचना है हमारे मन कर, जितना भी खास करके युवा किसान है उमन लगिन, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची बटले 18 से 35 साल कर युवा मन ले कृषि और कृषि संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करल जाते। तो गांव कर जितना भी स्वावलंबी छुआ मन है उमन उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीका से करे के लिए, चाहे समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास, लाह उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन जैके मछली पालन कहे ना, माली, मुर्गी पालन, गौ पालन, बढ़ई गिरी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर, ईसन सब प्रशिक्षण देवल जाते। तो इकरले ये आवासीय प्रशिक्षण है जेकि निःशुल्क है, खास करके जितना भी अनुसूचित जनजाति कर अभ्यर्थी मन है, छुआ मन है, उमन लागिन ये बिल्कुल से निःशुल्क है और हुआ रही के ही मन प्रशिक्षण ले सके ना। और इकर लागिन प्रत्येक महीना हर महीना कर 1 तारीख के नामांकन करल जाते। तो जितना भी खास करके अनुसूचित जनजाति कर छुआ मन ही और उरे मन अगर ये सब कर अगर प्रशिक्षण लेवे खोजिला उरे मन खेती बाड़ी से जुड़ल, चाहे और भी कोई भी अगर रोरे मन उद्यमिता विकास लगिन अगर प्रशिक्षण लेवे खोजिला, तो रोरे मन आय के संपर्क कर सकिला रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची में। और इकर लागिन कुछ दस्तावेज है जेके रोरे मन याद राखब कि अगर अपन संगे लेके रोरे मन के आवे है, जेकर में आधार कार्ड और जन्म और जाति प्रमाण पत्र और संगे एक ठो फोटो लेके भी आना है। तो भाई अपन हाथ के जगन्नाथ बनाएक है, तो रोरेमन के पहुंचे है रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची। तो ना भूलाब 18 से 35 साल कर छुआ मन रोरेमन ही आए के निशुल्क प्रशिक्षण ले सकीला। बड़ा जरूरी सूचना रहे।

0: सूत्र है। अब आगे हमरे मन के जैसे एखन हमरे मन बात करत रही कि गर्मी कर मौसम है, ई कर में कुछ एखन बारिश हुआ थे, तो किसान मन ले जे फसल तैयार है शशि भाई उकर ले थोड़ा सा तो नुकसान एखन
1: बरसात माय गलत तो बड़ा तो फजे सब्जी फसल में लागल है से कते नुकसान करते है देखो। और एखन बीच में पखल पानी भी संगे भी होते तो बहुत तैर कर देखभाल का जरूरत है एखन कर बेरा में।
0: तो गर्मा खेती में खास करके हमरे मन सब्जी कर खेती करी ला बहुत किसान मन एखन लगाए भी चुके हैं और किसान मन जे नहीं लगाए हैं मन लगाए कर तैयारी भी करत हैं। तो चलो हमरे मन जानी ला कि सब्जी कर वैज्ञानिक खेती खास करके गर्मी कर मौसम में इकर प्रबंधन हमरे मन कैसे कर सकेला, देख रेख कैसे कर सकेला, इकर बारे में हमरे मन के जानकारी देवत हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी जी और इनका से बात कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी आपने अपने खेतों में सब्जी लगा रखी है, खासकर कद्दू वर्गीय फसलों की हम बात करेंगे, जैसे लौकी, नेनुआ, खीरा या फिर बैंगन, टमाटर, बोधी, भिंडी, इन सब सब्जियों को आपने अपने खेतों में लगा रखा है और इस समय तेज़ धूप भी पड़ सकती है और तेज़ बारिश भी हो सकती है, ओला भी पड़ सकता है, मतलब प्रकृति का कोई भरोसा नहीं कब किस तरह से अपना वो मंजर दिखला दे। तो जब काफ़ी तेज़ बारिश हो तब हम इन सब्जियों में क्या प्रबंधन करें, किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन करें, कब हम सिंचाई करें और तेज बारिश के समय हम किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि फसल अच्छी हो, फसल की बढ़वार अच्छी हो और जब बढ़िया फसल होगा तभी आपकी आमदनी अच्छी हो पाएगी। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब। आप वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में। अंसारी सर स्वागत है आपका किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: इस समय सब्जियों में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन हम करें, जल सही समय मात्रा पर दें, तेज बारिश हो तो क्या करें, बहुत तपन हो, तेज धूप हो तो हम कैसे अपने इन फसलों का, इस कद्दू वर्गीय फसलों का बचाव करें?
3: देखिए किसान भाई, जैसा कि वो खेती करते हैं तो इस चीज़ों से बहुत परिचित हैं कि तेज़ धूप तो पड़ता है और तेज़ धूप गर्मी से तो सब्जियों को नुकसान होता है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है अचानक से मौसम बिगड़ेगा और तेज़, बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, उससे भी हमारे सब्जियों को नुकसान होता है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बिजली की कड़क भी आती है और साथ ही साथ ओलावृष्टि होती है, बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं जिसको हम लोग ओलावृष्टि कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि पत्थर गिर गया है, तो इससे तो बहुत भारी नुकसान होता है सब्जियों को। तो इन परिस्थिति में वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान भाइयों को अपने सब्जियों को कैसे बचाना है, क्योंकि जो गर्मा सब्जी है ऑलरेडी आपके खेतों में, हमारे किसान भाई खेतों में है और अभी फल फूल की अवस्था में है, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जी हो जैसे लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, ककड़ी इत्यादि, कहीं कहीं पे तरबूज की भी खेती हमारे किसान भाई करते हैं, हाल के दिनों में खरबूजा का भी खेती करना शुरू किए हैं और भिंडी और बोधी तो बहुत अच्छा सब्जी है ही गर्मी के मौसम का, इसकी भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर टमाटर, बैंगन, ये भी हमारे प्रदेश में गर्मी के मौसम में होता है। तो इन सब चीज़ों को जिसमें हम बात करेंगे कि कद्दू वर्गीय ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है, भिंडी को भी कोई बहुत समस्या नहीं है, बोधी को भी कोई समस्या नहीं है, टमाटर गर्मी से थोड़ी प्रभावित होती है, तेज धूप नहीं सहन कर पाता है और पत्ते तो उसके झुलसते ही हैं, फल भी प्रभावित होता है और तेज धूप से इसमें सन स्कॉर्चिंग हो जाता है और सही इसका रंग नहीं पकड़ता, सफ़ेदी टाइप का पीला होता है और डैमेज होता है, फ्रूट क्रैकिंग भी होती है, यानी नुकसान टमाटर को ज़्यादा होता है। तो अगर बहुत तेज़ धूप हो तो किसान भाई थोड़ा सा अगर खर्च करे अपने टमाटर के फसल में तो 8 फीट की ऊंचाई पे खूंटा गाड़ दें और एक शेड नेट हरा रंग का आता है उसको अगर ऊपर से छप्पर की तरह दे दे, साइड में खुला रहे कोई दिक्कत नहीं, गर्म हवा चलती है लेकिन उतना सह लेगा फसल। ये जो शेड नेट है, शेड मतलब ही होता है छाया वाला जाली, शेड नेट छायादार जाली, तो ये धूप की गर्मी को आधा कर देता है, तो जिससे जो गर्मी से जो फसल को नुकसान होने वाला था खासकर टमाटर को वो नहीं होगा। अन्य सब्जी जैसे कद्दू वर्गीय है जिसमें मैंने बोला लौकी, नेनुआ, झिंगी, करेला, खीरा, इसको बहुत नहीं पड़ता है, जितनी गर्मी उतना अच्छा होगा, एक सीमा तक, अगर 45 डिग्री से ऊपर जाता है, 48-49 है, उतना तो जाता नहीं मेरे प्रदेश में लेकिन कहीं कहीं पे 47-48 जैसे प्लामू में चला जाता है या सिंहभूम के कुछ इलाकों में, खासकर जमशेदपुर के इलाके में, धनबाद में कभी कभी चला जाता है, तो वहाँ पे झुलसने की समस्या इन सब्जियों में भी होती है। तो उसको बचाने के एक ही उपाय है कि आप

0: जल का उचित प्रबंधन करें हमारे किसान भाई, समय समय पर सिंचाई करें। देखिए होता क्या है कि गर्मी का मौसम है, आप बहुत भारी मिट्टी में करेंगे तो सब्जियां नहीं होती है, थोड़ी हल्की मिट्टी चाहते हैं हम लोग ताकि अच्छा फसल हो। तो हल्की मिट्टी है तो पानी जल्दी जल्दी सूखेगा, तो सिंचाई जल्दी देनी होगी। एक तो मौसम की तपिश, ऊपर से मिट्टी भी आप थोड़ी मुलायम, हल्की मिट्टी लेके खेती किए हैं, वैसी जगह पे आपकी बाड़ी होती है, ये आप जो सब्जी की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार 5 से 6 दिनों में, कहीं कहीं 4 दिनों में आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे हमारे किसान भाई, खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों में जिसमें लौकी है, नेनुआ है, झिंगी है, खीरा है, ककड़ी है, तो ये सब्जियां क्या होती है, अगर फल के बढ़वार के समय फूल से फल बला, अब ये फल का विकसित होते रहता है, ये तो कंटिन्यूअस है, हर दिन तोड़ते हैं, एक दिन दो दिन के गैप से हमारे किसान भाई इन सब्जियों को, पानी की जहां कमी होगी फल तीता हो जाएगा। हालांकि तीता होने का कुछ और भी कारण है, कभी कभी आप पानी की कमी नहीं कर रहे हैं फिर भी तीता हो रहा है, वो एक वैज्ञानिक कारण है जो किसी किसी प्रभेद में होता है, मेटाजेनिया इफेक्ट हम लोग कहते हैं, वो कुछ जेनेटिक कारण है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल वेराइटी जो बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा दूसरे के खेतों में हो रहा है, लेकिन आपके खेत में अगर तीता हो रहा है वही वेराइटी, इसके मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं फल के बढ़वार के समय उसको पानी की कमी कर दिए। अगर 2 दिन के पानी की टान आप कर दिए, रोक दिए, और उस समय कुकुरबिटेसिन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये खासकर लौकी, नेनुआ, झिंकी, खीरा में तीता होना आम बात है। आप बाजार में अक्सर आप खरीदते हैं तो पहले कहते हैं खीरा तीता तो नहीं है, खीरा में तो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे किसान भाई गर्मा खेती कर रहे हैं। तो ये बात हुई। अब अगर दूसरी बात, जैसे आप अभी चर्चा कर रहे थे कि नहीं कि अगर तेज बारिश हो जाए तो हमारा प्रदेश, खासकर झारखंड प्रदेश है, रांची तो उसमें सबसे अधिक, रांची और आसपास का जो जिले है, इसमें क्या है कि अचानक से मौसम बिगड़ता है, दोपहर 12-1 बजे तक बढ़िया धूप है, लगेगा आज बारिश नहीं होगी, अचानक से बादल उमड़ेगा और तेज आंधी तूफान बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में सारी सब्जियाँ प्रभावित होंगी। तेज बारिश अचानक से होगी तो प्रभावित होंगी, चूँकि आपने जो खेत बना रखा है, क्यारी बना रखा है गर्मी के मौसम में उचित जल प्रबंधन के लिए, सिंचाई करने के लिए, तेज बारिश होगी तो जल जमाव की समस्या होने के डर है, तो जल निकासी तुरंत करना पड़ेगा। और तेज आंधी तूफान बारिश हुई है या फिर उसके साथ ओले पड़ गए हैं, बर्फ के जो पत्थर जैसा होता है वो ओला पड़ जाता है, बहुत लोग गलती से बर्फबारी कह देते हैं, ये बर्फबारी नहीं है, ओलावृष्टि है, अंग्रेजी में हेल स्टॉर्म कहते हैं और आम भाषा में किसान पत्थर गिरा है कह देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अगर जल जमाव जैसी स्थिति बनी है, तेज़ बारिश हुई है, तो रात भर भी अगर जल जमाव रह जाएगा तो सब्जियाँ प्रभावित होंगी। तो पहले तो जल की निकासी की व्यवस्था करना है, नाली काट के जैसे आपको हमारे किसान भाई कर लें। दूसरी बात है, दूसरे दिन जाएं और जितने पत्ते टहनियां नीचे टूट के गिर गए हैं, फल गिर गए हैं, उसकी सफाई कर दें, और एक सावधानी के तौर पे अब जख्मी पौधा हो गया है ओला से या तेज बारिश से, आंधी तूफान से, तो अब उसमें जख्म हो गया है, पत्ते टूटे हैं, टहनियां टूटी हैं, तो उससे इन्फेक्शन का चांस होता है। तो सावधानी के तौर पे हमारे किसान भाई एक फफूंद नाशक कार्बन डाइजीम नाम की दवा आती है, 1 ग्राम प्रति लीटर उसे दे दे। हालांकि ये दवा प्रतिबद्ध हो चुकी है, लेकिन दूसरा इसका ऑप्शन नहीं है, किसानों को मिल नहीं पाता है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं। लेकिन इसके लिए दूसरी दवा ट्यूबाकोनाजोल नाम की एक दवा आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, और नहीं मिले तब मजबूरी में कार्बन डाइजीम भी आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिबंधित किया गया, हम क्षमा चाहेंगे इसमें, लेकिन चूंकि किसानों के पास ऑप्शन नहीं है, उसका नुकसान भारी हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि एक छिड़काव आप कर सकते हैं इसका, नहीं अगर ट्यूबाकोनाजोल मिल जाए तो आप उसे करें, और इसके साथ आप एक कीटनाशक मिला दें, जैसे मिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, या फिर दूसरी दवा और जो सरकार ने अनुशंसित की है उसमें से मिडाक्लोप्रिड अभी है, उसका 1 ml प्रति लीटर, दोनों मिला के एक छिड़काव सावधानी के तौर पे कर दें, तो जो बारिश के वजह से संभावित नुकसान होने की संभावना है कीड़े बीमारी की, उससे आपके फसल बचे रहेंगे। किसान भाइयों को हम इस मामले में ये सलाह देंगे।
1: जी, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फसल आपकी सही रहेगी।
0: हाँ, बची रहेगी, चूँकि देखिए एक तो गर्मी से है, मैंने कहा पहले छाया देके टमाटर को बचाएंगे, कैबिनेट से, सिंचाई प्रबंधन अच्छे से करेंगे, तेज आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि हो तो कैसे बचाएंगे, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो और गर्मी में कोई बीमारी और कीड़े की बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं आती हैं। हाँ, अगर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश रेगुलर हो रही है, वातावरण में नमी आ गई, तब फिर जैसे जैसे कीड़े पनपने लगेंगे तो ये जो इमिडा क्लोप्रिड नाम की दवा मैंने कहा, अगर जैसे अभी डेली डेली बारिश हो या एक दिन छोड़ छोड़ के बारिश होगी तो वातावरण में नमी होगी और तापमान भी गिर के 30-32 डिग्री तक आ जाएगा, तब वैसी स्थिति में कीड़े बीमारी भी ज़्यादा पनपने लगेंगे। तब हमारे किसान भाइयों को हर 10-15 दिनों में इमिडा क्लोप्रिड नाम की एक दवा है, उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब्जियाँ प्रभावित होंगी और उत्पादन भी प्रभावित होगा।
1: जी, फसल में चमक हो, पड़वार उसकी अच्छी हो, अच्छे तरीके का लौकी हो, नेनुआ बढ़िया हो और बैंगन में चमक हो, टमाटर अच्छा हो, बोधी भिंडी सब अच्छे तरीके से बढ़िया उत्पादन ले पाए, किन किन और बातों का ध्यान रखा जाए डॉक्टर
0: जी? हम लोग कहते हैं ना कि जो संतुलित आहार लेता है जो मानव, वो तंदुरुस्त दिखता है, उसके चेहरे में चमक होती है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो तो संतुलित आहार। तो ये संतुलित आहार हमें अपने पेड़ पौधों को भी देना होगा, अपनी सब्जियों को भी देना होगा। आप संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार ये है कि जब आप सब्जियां की खेती करते हैं तो उसमें 3 तरह के मुख्य पोषक तत्व होते हैं, एक नेत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्फूर और पोटास। तो इसका जो अनुपात है, ज़्यादातर सब्जियों में हम लोग 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास देते हैं, खासकर ये जो गर्मी फल में हम जैसे कहा लौकी, नेनुआ, झिंगी, कद्दू, करेला, टमाटर, बैगन, ये मैंने जो
1: इसका
0: कहा
1: छिड़काव करते हैं।
0: हाँ नहीं, इसमें देते हैं खाद के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में, 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर। ये जो मैं बताता हूँ, हम लोग वैज्ञानिक लोग बताते हैं हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है और 1 एकड़ में 100 decibel होता है, ये हमारे किसान भाई जानते हैं। तो 2.5 एकड़ मतलब 100 meter लंबा, 100 meter चौड़ा की जो जमीन होगी वो 1 हेक्टेयर होगा, 2.5 एकड़ होगा, उसका ये दर है। अब क्या है, 100 की जो नाइट्रोजन जो हम कह रहे हैं और 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास कह रहे हैं, इस रूप में तो आता नहीं है, किसान डालते हैं DAP और पोटास के रूप में और यूरिया के रूप में। तो हम ये भी बताते चले अपने किसान भाइयों को, आप देखते होंगे कि बोरी में लिखा रहता है यूरिया की बोरी में 45% नाइट्रोजन, यानी 100 kg अगर आप यूरिया डालेंगे तो 45 kg नाइट्रोजन मिलेगा। DAP के बोरा में देखेंगे तो 18 और 46 लिखा रहेगा, टोटल 64% इसमें पोषक तत्व है, ये प्रचार भी करता है DAP वाला, तो 18% उसमें नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस है, यानी 100 kg 50-50 kg का अगर 2 बोरा DAP हमारे किसान भाई देंगे तो उसको कितना मिलेगा फास्फोरस 46 kg और नाइट्रोजन मिलेगा 18 kg। क्लियर हो गया
1: जी?
0: तो आप 100 kg फास्फोरस देने के लिए आपको 108 kg देना पड़ेगा, 108 से 10 kg देना पड़ेगा, तब फास्फोरस मिलेगा। और जब 108 kg आप DAP दे देंगे तो 18 kg नहीं, 21-22 kg आपको यूरिया मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, तो उतना यूरिया आपको कम करना पड़ेगा। और जब 1 क्विंटल जब आप दे रहे हैं 100 kg यूरिया, तो आपको 45 kg मिल रहा है उसमें नाइट्रोजन, तो इसके मतलब 200 kg जब हम देंगे तब जाके आपको 90 kg मिलेगा। तो आपको 100 kg की ज़रूरत है, तो 200 kg पूरा ना भी दें तो 185 kg के आसपास यूरिया देना पड़ेगा, 110 kg DAP देना पड़ेगा और करीब 85 से 90 kg पोटास देना होगा, क्योंकि पोटास में जो म्यूरेट ऑफ पोटास जो खाद आता है जिसको पोटास किसान कहते हैं, उसमें 60% पोटास रहता है। तो आपको 85-87 kg जब देंगे पोटास तो 50 kg मिल जाएगा। DAP जी हमें जितना ज़रूरत है तो 110 kg के आसपास देना होगा और यूरिया 100 kg देने के लिए, क्योंकि 20 kg हमको मिल जा रहा है इससे, तो हमें उधर अब चाहिए अब 80 kg, तो 80 kg देने के लिए 180 kg के आसपास देना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़ा गणना करना पड़ता है, हम लोग रफली बता दिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1-2 kg आगे पीछे होगा, तो उतना से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये करना होगा। अब सब्जी की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो सब्जी की खेती को हम लोग अनुशंसित करते हैं कि जब तक आप कंपोस्ट या FYM नहीं देंगे आपकी बढ़िया चमक और अच्छी सब्जी नहीं होगी। तो ये हम लोग ज़्यादातर सब्जियों में कहते हैं कि 20 टन यानी 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से FYM या कंपोस्ट देना पड़ेगा। अब जो जैसे बोधी है, एक एक्सेप्शन गर्मा सब्जी में, इसमें ना ही नाइट्रोजन उतना देना है ना ही कंपोस्ट उतना देना है, 10 से 12 टन यानी 1000 से 1200, मतलब 100 से 120 के क्विंटल अगर आप दे देते हैं, 10 से 12 टन अगर आप दे देते हैं कंपोस्ट FIM, तो काफ़ी होगा। हाँ, मैक्सिमम दे तो 15, उससे ज़्यादा नहीं, 15 टन से ज़्यादा नहीं देना होगा। अब दूसरी बात क्या हो रही है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा थोड़ी अलग हो जाती है।
2: तो एखन हमारे मन जानकारी करत रही गर्मी में सब्जी मन कर जो है वैज्ञानिक प्रबंध बतात रहे हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी, इनके से बातचीत करते रहे संजीव कुमार लाल।

0: तो सोचे भाई एकरे संगे खेती बाड़ी कर बेरा तो हेलै सिरालक और बेरा हो गेलक हमारी दुनिया युवा सभा कर और इधर फिर से सबकर स्वागत करेला हमरे मन कार्यक्रम में जितना भी नौजवान भाई बहन मन है खास करके युवन कर कारण है कि हमरे मन आज कर दिन में युवा सभा करेला। और देखो शशि भाई युवा हमरे मन कर देश है, युवा देश भी कहल जाएला और कहल जाएला नहीं कि कोई भी देश के आगे लेके जाएला तो युवा लेके जाएला, तो युवा देश ही हमरे मन कर सोच विचार भी नवा है, तो नवा जो सुमंग के साथ हमरे मन के काम करे कर दरकार है।
1: हाँ, और युवा कर्मन संगे संगे सबके एक दूसरे से मिल के काम करे के। अगर भी कोई काम के अकेले करत ही और जहाँ अगर हमें 10 जन मिल के या एक समूह के रूप में या सब एक दूसरे से अगर मिल के करत ही तो बहुत बेहतर ढंग से वो काम के कर सकीले और आगे बढ़ सकीले। सेले के कुछ से भी संबंध जो है मधुर बना के रखे के चाहिए।
0: हाँ ठीक कहा थी रुए, और मिल के रहले है हमरे मन कोई भी काम के आसानी से कर सकीला और बढ़िया से कर सकीला। और देखो हमरे मन छोटा छोटा बात में लड़ाई झगड़ा चाहे हमरे मन में मतभिन्नता हो जाएला, कभी कभार झगड़ा बहुत आगे तक बढ़ जाएला और इकर से मामला बहुत बगड़ जाएला तो आदमी मन में दूरी काफ़ी बढ़ते जाएला। शशि भाई तो हमरे मन के सबकर से मिलजुल के रहना जरूरी है, खास करके जब हमरे मन देखी नहीं अगल बगल कर आदमी मन से हमरे मन के हमेशा मिल के रहे चाहिए। कहल जा रहा कि सब सुख दुख में रो आदमी मन बहुत करीबी आदमी मन उमन के आवेक में देरी लागे
1: लागे ला, लेकिन ले, पड़ोसी हाँ। है अपन अगल बगल का तौर पर गांव घर में भी देखब कि पहले कर बेरा में और आज कर बेरा में बहुत तरह का फर्क है कि जो पहले जो मधुरता है धीरे धीरे अब खटास होते जाते हैं, तो पहले वाला मधुरता के बना के रखे के कहले कि पहले के बेरा में गांव घर में कभी देखा तेरी शादी ब्याह बहुत रहने तो कहूँ से बाहर से आदमी बुलाए की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पड़ोसी बगल वाला है से कोई आधा काम के उस हमरा देवत है, मिल के सब पूरा गांव का आदमी जो है जितना अगल बगल सब मिल के ही सब काम कर लेवत रहे
0: एकदम, माने पैसा कर बचत हो जात रहे, समय कर बचत हो जात रहे और काम भी बड़ा हंसी खुशी हो जात रहे
1: सब एक दूसरे सब अपन आदमी बात करते करते ही करते करते सब जे भी खुशी है सब आराम से पार हो जाते रहे। नहीं देखो कि कोई बांस काटे गेला, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई खाना बनाए में सहयोग करते, कोई चार गो बैठ गए तो सब्जी बनाते हैं पूरी बनाते हैं, और एखन तो देखो का कहना आदमी कर जो मधुरता है कम होते जाते जते मेहमान आवे लोकर से बगरा तो काम करे वाला आदमी मन
0: एकदम सही करते आदमी आपन में बढ़ते जाते मतलब एकला होते जाते, तो भाई मदती हमरे मन के जे हमरे मन का अपन पहचान है से के आज भी हमरे मन के जिंदा रखे है उके छोड़े के नखे हमरे मन के। और देखो ठीक बट याद करत ही हम हो कि जब हमरे मन के घर में छाइन पहले छारत रहे नी तो सबके हमरे मन बोलात रहे मस्त मार के हमरे मन पचाइट खात रहे इतना बढ़िया रोपा लोभा
1: सब एक दूसरे का मदद करके काम निकल जाते रहे, पते चलत रहे कि सुख में दुख में कोई चीज भी हो अलग मजा रहे।
0: तो भाई एकदम हमरे मन के पुराना दिन के याद करे के जैसन के अखन हमरे मन याद करके बड़ा रोमांचित हुआ थी बड़ा खुश हुआ थी, तो अपन पुराना जो परंपरा है संस्कृति है उके हमरे मन के बचाए के रखना बहुत जरूरी है। और संगे संगे शशि भाई यो हम बताए खोजिला कि आज देखो विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है और ये बहुत कह सकीला कि एक ठो ऐसा रोग है जेकर से जे भी पीड़ित है आज वो बहुत परेशान है, मतलब उकर में रोग ऐसा होएला नहीं कि खून कर कमी हो जाला उके, अरे आनुवंशिक बीमारी है मतलब माए बाप से ही पसरे वाला बीमारी है, तो जैसे माए के अगर बाप के अगर ये बीमारी है तो उकर में छुआ में भी आ जाला और इकर होएला कि लगातार मतलब खून इकर में चढ़ाई खोएला और कह दाओ तो छुआ मन इकर शिकार भी हो जाए ना बहुत बार, तो ऐसा बीमारी है जेकर से आज हमरे मन के बाचिक बहुत जरूरी है। और संगे संगे हम तो कहब कि भाई हमरे मन के रक्तदान जरूर से जरूर करे चाहिए शशि भाई, एकर से अपन शरीर कर भी हमरे मन कर जे खून है लगातार बनते रहेला और नवा खून बनेला तो हमरे शरीर में ताजगी भी बनल रहेला, लेकिन कह दाओ देखीला कि भ्रांति भी है शशि भाई, बहुत आदमी मन रहे ना खून दान करे से कहे ना कि नहीं नहीं हमर के कमजोरी हो जाए चाहे हमर खून निकल जाए तो फिर हम नहीं बचब कह दाओ, तो ऐसा भी आदमी सोचे लेकिन रुके हम बताए खोजेला कि हम अपन अपन बात बताती कि एखन तक हम 13 धाव कर चुके और किसी तरह कर कोई समस्या नहीं, और हम तो चाहेला कि हमके भगवान के ना करे केहु के ऐसा जरूरत पड़ जाए, लेकिन हर समय हम तैयार रहेला शशि भाई
1: नहीं, बहुत बेस्ट बात।
0: और हर 3 महीना में हमरे मन कर सकीला ये माने डॉक्टर बटले भी कहल जाएला कि हर 3 महीना में आदमी मन रक्तदान कर सके ना, तो रक्तदान जरूर करूँ भाई हमर वास्ते भी और दूसर आदमी के जेके बहुत जरूरी है खून के से कर ले भी है बहुत जरूरी है। तो शशि भाई अब हमरे मन आगे भी बतियात रहब हमरे मन, लेकिन चलू आगे।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शशि भाई, देखो हमरे मन तखन कहत रहनी कि हमरे कर देश युवा देश है, तो हमरे कर भूमिका भी बहुत बगड़ा होएला कि अपन देश के, अपन राइज के, अपन गांव के कैसे हमरे मन आगे लेके चलू, कैसे प्रगति का डहर में हमरे मन की अगुवाई सकीला। देखो हर ठीना, मतलब ऐसा नखे कि पढ़ लिख गली तो खाली हमरे मन के सरकारिये नौकरी करे के, चाहे नौकरिये बटे जाए के, छोटा मोटा काम भी करके हमरे मन अपन गांव के, अपन समाज के आगे बढ़ाए सकीला।
6: अपन संगे संगे अपन गांव पर और युवा मन के भी एक दूसरे से जोड़ के उके भी रोजगार दे सकीला। बहुत सारा काम है गाँव घर में
5: एकदम। तो देखो सबके आगे लेके, मैं खास करके समाज के अगर हमरे मन के आगे लेके चलना है, गांव के आगे लेके चलना है, तो हमरे मन कर भूमिका भी बहुत बड़का है। तो चलो इकरे बारे में हमरे मन जानकारी करत थी कि समाज कर प्रति युवा मन कर का भूमिका है, और इके बताते हैं डॉक्टर सुखदेव साहू।
7: सही, एक सामाजिक प्राणी कहल जा है। समाज में जन्म लेके भला बुरा कर्म करके समाज में ही मर मिट जाएना। समाज में अच्छा कर्म भर रह जाएला। समाज में एक दूसर कर दुख दर्द में हाथ बटाएना, उके समाज सेवी कहल जाएला। समाज कर सेवा चलते ही मरल के बाद भी मदर टेरेसा के संत कर उपाधि मिललक। वर्तमान समय में सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदलत है। चारों बटे भौतिक और आर्थिक प्रगति नजर आवत है। सुख सुविधा कर साधन दिन प्रतिदिन आविष्कार होवत है, मुदा आंतरिक दृष्टि से मनुष्य कर मन टूटते और बिखरते जाते। भारत देश पहले जगत गुरु कहलात रहे। मनुष्य कर इच्छा और कामना कर कोनो सीमा नखे। इसन स्थिति में समाज कर समरसता और सहयोग कर भावना जिंदा नहीं रह सकेला। सुख शांति और आनंद कर दर्शन नहीं हो सकेला। कुसंगति से युवा बर्बाद होना और सुसंगति से युवा विकास करायना। अगर समाज कर युवा जाग जाबे तो समाज कर दशा और दिशा बदल के रही। भारत में 16 से 25 वर्ष कर युवा मनक संख्या 21.5 करोड़ है। इतना बड़ जनसंख्या सकारात्मक और रचनात्मक काम में लायक जाबे और भारत के संसार का शिखर में पहुंच

बचाई सकेना। आज का युवा मन के भारत का महापुरुष सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसन महान युवा क्रांतिकारी मन से शिक्षा लेवे के चाहिए और अपन जीवन में धारण करके समाज के सेवा करे के चाहिए। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम कर महानायक मन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे युवा रहे। रानी लक्ष्मीबाई सेखन 26 साल कर रहे। देश का आजादी खातिर झारखंड कर शहीद मन में ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव सैकड़ों युवक फांसी के फंदा में चिढ़ गए। 1908 ईस्वी में स्वाधीनता यज्ञ कर बलि वेदी में शहीद होने वाला खुदीराम बोस मात्र 18 साल कर युवक रहे। युवक समाज का रीढ़ है। युवक मनक मन में शक्ति कर संचार होते रहेला। युवक मन के बने और बिगड़े कर समय 12 से 20 साल तक रहेल। इस समय में युवक कच्चा माटी और कच्चा काठी लखे रहन। समय कर सही सदुपयोग कर लेवें तो जीवन धन्य हो सकेल। समाज के प्रति युवा मन के ई लखे काम करे के चाहिए। पहला सामाजिक समरसता। समाज में हर जाति धर्म कर आदमी रहना, ऊंच नीच भुलाई के सबके एक समान के भाव से देखे के चाहिए। समाज कर हर काम में युवा मन के बढ़ चढ़ के साथ देवे के चाहिए। समाज कर काम के ईसन करे के चाहिए कि दूसर समाज कर आदमी मन कर भी भला हो सकेला। समाज कर युवा मन के सामूहिक काम करे के चाहिए। समूह कर काम आसान होवेला। समूह कर काम करे में हर आदमी से राय सलाह लेवे के चाहिए। समाज में सहिया और मदद कर संस्कृति के व्यवहार में लाने के चाहिए। केकरो धान रोपे के है, मरखी में काठी फारे के है, शादी ब्याह में खाना पकाए और खियाए के है, इस सब काम सामूहिक रूप से युवा मन के करे के चाहिए। समाज का विकास लेकिन बुजुर्ग मन का राय भी लेवे के चाहिए। शिक्षा समाज कर हर आदमी के मिले के चाहिए। साहित्य समाज कर दर्पण है के शिक्षा कर अभाव में समाज कर कल्पना नहीं कर सकीला। युवा वर्ग गांव कर छुआ मन के नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, जीवन जीवे कर शिक्षा देवे के चाहिए। गरीबी कर चलते पढ़े के नहीं पारत है, उसन छुआ मन के पढ़ाई चाहिए। स्कूल नहीं जाए खोजत है, उसन छुआ मन कर माए बाप के शिक्षा कर महत्व के बताए के चाहिए। बूढ़ा मन के भी रात्रि पाठशाला कर पाठ पढ़ाए के चाहिए। स्कूली शिक्षा कर साथ स्वावलंबन कर पाठ भी पढ़ाए के चाहिए ताकि अपन रोजगार कुटीर उद्योग लघु उद्योग कर रूप में कर सकें और अपन जीवन के संवार सकें। गांव कर छुआ मन के छोटे छोटे कहानी कर माध्यम से बाल संस्कार शाला चलाए के चाहिए। कहानी के अपन भाषा में बताए के चाहिए। खेल और संगीत कर भी ध्यान देवे के चाहिए। स्वस्थ समाज कर हर आदमी के रहे के चाहिए। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रही तबे सब समाज का निर्माण हो सकेला। अच्छा खान पान, रहन सहन, आचार विचार से आदमी कर तन और मन स्वस्थ रह सकेल। जंग फूड से छुआ मन के बचाए के चाहिए। कहल भी जाहे जैसन खाबे अन्न उसन बनी मन। गांव कर युवा मन के जड़ी बूटी कर ज्ञान सीखे के चाहिए। झारखंड कर कोना कोना में दवाई बीरो भरल है, उकर गुण के जाने के चाहिए। इके पारंपरिक इलाज कहल जाएला। युवा मन के प्रारंभिक चिकित्सा कर सामान रोई मलहम पट्टी राखे के चाहिए ताकि तुरंत इलाज करके अस्पताल पहुंचाए के चाहिए। गर्भवती महिला मन के टीकाकरण कर बात बताए के चाहिए और अस्पताल में ही प्रसव ले भेजे के चाहिए। शरीर से इतना श्रम करे के चाहिए कि पसीना निकले के चाहिए। छोटा मोटा बीमारी पसीना से निकल जाएला और आदमी निरोग रहेना। समाज के स्वस्थ राखे में युवा मन के आगे आवे के चाहिए। प्राचीन काल में मनुष्य मन योग व्यायाम करके 100 वर्ष तक जीवत रहत रहे। भारत देश कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या कर अधिक भाग गांव में निवास करें और खेती बाड़ी करेना। जनसंख्या बढ़ते जाते मुदा खेत डाँड कम होते जाते। सेले समाज कर युवा मन के चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत खेती के प्रशिक्षण लेके गाँव कर किसान मन के पैदावार बढ़ाए वाला खेती करवाए चाहिए। सिंचाई कर व्यवस्था ले युवा मन कुआं कर निर्माण, डोभा कर निर्माण आसानी से कर सकें। अगर 5-5 युवा मन एक एक दिन में 1 फीट गढ़ा कोड़बें हल 30 दिन में 1 कुआं का निर्माण हो सकेला। नदी नाला कर बहता पानी के संरक्षण करे कर उपाय करे।

0: चाहिए और कृषि कार्य में लगाए चाहिए। खेती कर साथ साथ पेड़ लगाए भी चाहिए ताकि पर्यावरण का रक्षा और वर्षा हवे कर शक्ति मिल सके। स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ अभियान प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है। समाज का युवा मन के टोली बनाए के सामूहिक सफाई करे चाहिए और सफाई कर महत्व के बताए चाहिए। गाँव कर हर आदमी अपन अपन घर कर बाहरे साफ रखबे तो गंदगी कर नाम नहीं रही, गंदगी नहीं रही तो तन मन साफ रही। साफ सुथरा ठाव में ही देवता कर वास होवेला। तुलसी 2400 घंटा ऑक्सीजन छोड़ेला जे मनुष्य इकरे से जिंदा रहे ना। समाज कर युवा मन के गांव घर और जंगल की सुरक्षा भी करे चाहिए। अंधविश्वास समाज कर कोड़ है के हर दिन कर अखबार में टीवी में देखे के मिलेला कि डाइन भी शाही कर नाम से कितना मार काट होत है, वैधमती समाज के लूटत है। अंधविश्वास के मिटाई के लिए युवा मन के नुक्कड़ नाटक कर माध्यम से गीत कर माध्यम से शिक्षा देवे चाहिए। डाइन बिसाही समाज कर कमजोर गरीब विधवा मन के धरैना, बड़ धनी मानी मन के नी धरैन। कहल जाहे रजा कर माई के केव डाइन कहन। अंधविश्वास के मिटाई के लिए युवा मन के आगे आवे चाहिए। आठवां है रोजगार कर उपाय। समाज कर युवा मन के सरकारी नौकरी कर भरोसा में नहीं रहे चाहिए, स्वरोजगार कर उपाय करे चाहिए। मधुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और गाय पालन कर प्रशिक्षण ले के समाज कर युवा मन के प्रशिक्षण दे चाहिए। खुखड़ी उपजाई, पापड़ अचार, मोमबत्ती बनाई, सिलाई बुनाई करे तबे बेरोजगारी दूर हो सकेला। और समाज कर मुख्य धारा में जुटे चाहिए। समाज में ही उचित अनुचित कर फैसला करे चाहिए। कोर्ट कचहरी कर चक्कर में नहीं पड़े चाहिए, इकर से समय और पैसा कर बर्बादी है। समाज में सज्जा नहीं दे के उके सुधरे कर मौका देवे चाहिए। ई लखे समाज कर हर समस्या कर समाधान युवा मन के समाज में ही करे चाहिए, तबे राष्ट्र और देश का विकास हो सकेला।
1: तो ये नागपुरी वार्ता हमरे सुनत रही, समाज कर प्रति युवा मनक भूमिका बतात रहे डॉक्टर सुखदेव साहू।
2: शशि भाई बड़ा नगद जानकारी होलक और जितना भी सुनोया भाई बहन मन है उमन भी बात के जानबे गुनबे कि भाई हमरे मन कर प्रति जे भी हमरे मन कर है भूमिका अपन देश के प्रति समाज कर प्रति उके हमरे मन के जाने के है बुझे के है और उकर प्रति हमरे मन के जवाबदेह भी होवे के है। तो एकरे संगे आप चले कर भी बेरा हुई। हाँ, तो जाते जाते बता थी कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर लगे। शशि भाई चले चाहिए।
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड भाजपा ने बधाई दी है। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राज्य में बिजली और पानी एवं संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है। मौके पर मौजूद सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग में बिजली की बदहाल स्थिति और पानी के हाहाकार पर गहरी चिंता जताई।
2: इस शहर में बिजली है, आना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया। दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। जिस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता

0: पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है, बिजली पानी, जो बेसिक अधिकार है लोगों का, वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन कर रही है।
1: उधर रामगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कोर्ट मोड़ से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री सारंगी ने दावा किया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ, तो निश्चित रूप से असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
1: गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर समेत पूरा संताल परगना क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सांसद ने क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए पावर ग्रिड, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों से आधारभूत ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कल से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डॉ. कौशल ने बताया कि घोटाले की जड़ें गहरी हैं और इसकी बिंदुवार जाँच की जा रही है।
4: हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है। ट्रेजरी कोड जो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है, झारखंड फाइनेंशियल रूल्स हैं और पुलिस मैनुअल, ये तीन चीजें हैं। उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के समय समय पर निर्गत इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करके क्लियर फाइंडिंग्स पे पहुंचे।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। आज रांची में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। विश्व रेडक्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों और संस्था के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस से जुड़े कार्यकर्ताओं का योगदान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। राजधानी रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ते जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
5: हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में पानी का रोकने का जो टेक्निक ये सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में पीरस्टाण में नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 22 से 24 मई तक रांची में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए स्टेट लेवल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ईस्ट जोन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस कोर्स के लिए खिलाड़ियों के पास नेशनल चैंपियनशिप में खेलने और ऑफिशिएटिंग का काम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हॉकी इंडिया ने इच्छुक उम्मीदवारों से 10 मई तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेले खोमचों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को शहर में निर्मित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 117 दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
2: रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है।
1: वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां भविष्य में नए वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।
3: एक साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच नहीं रोड नहीं थी, शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी, तो वो रोड बनना चालू हो गई है जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है और सामने तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है अप्रोच रोड। आने वाले एक वीक के अंदर या दो वीक के अंदर जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे वो रोड कंप्लीट हो जाएगी और इसलिए वहां पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे वो वहां पर जाएंगे।
1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीपीएल कोटे में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट rte.dhanbad.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

0: इसके लिए आवेदक को संबंधित वार्ड पार्षद या पंचायत के मुखिया से अपने घर का पता सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। साथ ही घर के बाहर खींची गई जियो टैग तस्वीर लोकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। 30 मई 2026 तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएल कोटा में एडमिशन के लिए अभिभावक को सही जानकारी देने से संबंधित एफिडेविट भी जमा करना होगा। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे और ट्रैफिक डायवर्जन इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बिंदु बना हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
1: केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, पुटकी, खोखवस विक्रेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। फिर पिछले बार जो हम लोगों ने निश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। तो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग का काफी परेशानी हो रही उससे, और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग पांचों जगह के और धनबाद के लोग भी इसमें हमको सहयोग भी करेंगे।
0: विधायक के आंदोलन को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सांसद समेत अन्य नेताओं ने भी इस रास्ते से आवागमन पुनर्बहाल करने को लेकर आवाज उठाई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
2: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

रेडियो रे होकुरुडुरु आदिवासी अखड़ा अयुमतन सनाम हगांड मिसिको अलिंग सुनाना वोय पायते किन पायते इकेर जीवनते इबिल सिबिल जोहर हगा को इसो जोर गुरुम तना मिंदो रांची रे दो गम्मा इडतनते जो को रिया गया दातना तिसिंगा गम्मा न उकड़ा अंडो अब वो डोंगल पादो ची हतु पादो ना बरसिंग दो ऊंची को तमे तना आंधी बला अंडो दुलसुनु में मन कुरुडुरु को हुबन तना निमिन जेटे रियो रास तैने कुपुल कोलो जपगर तिया सुसुंदर रंग तिया मित्ता दुबे के नेते जमनू तिया निनगे मूड रास दो दुलड़हा गांडो मिसिको तिसिंग टुटके जगर लोते दुरंग कोलिंग दिपिलदार रतड़ा मांगते तिसिंगे टुटके जगर परिश्रम सफलता की कुंजी है मने जान पाइटी पनेटी पुरे लगिन कुरुमुटो निनंगा ना बुन्नेल किड़ा जी मैट्रिक रिया रिजल्ट ओल लेना हुन को बुगी लिखे को पढ़ाओ किड़ा बुगी नंबर तक को पास किड़ा निना अकुआ मेहनत परिश्रम रिया फल गितना जान पैटी रियो जो दी मेहनत ते पैटी रदो एन रिया उसूर एन जकेट कार रियो तयम तरो नेलोगिया इनमेंते हगांडो मिसिको का लंडियन तिया अंडो का लंडिये किने ते परिश्रम करने ते पैटी तिया के भुगिने दुलड़ हगा को निंता मुंडो दुरंग बयम लिया दुरंग तनकिन दो

क्लास रे कुन कुड़ी बुगिले का ओल पड़ाव ताना इनी सरकार पायते टैब को पुरस्कार रूप ते को इमो को इमा को ताना निमिन सुविस्ता को नामेतन रे रियो जोदी जान कुड़ी होन ओल पड़ाव बागे के रे दो सरकार पायते इनकन होन को कस्तूरबा गांधी स्कूल करे नुतुम को ओल इची को ताना ओंडो इंत आयते आयरपा पढ़ावतिया पूरा हुरा को उद्बे को ताना स्कूल रे सुमंग दो का कॉलेज रे पढ़ावती तिबा के रे समय समय पर स्कूल पायते छात्रवृत्ति पैसा को नामे ताना ओंडो चितन पढ़ाव उस शिक्षा लगे छात्रवृत्ति योजना ओंडो फेलोशिप को नामे ताना इन फेलोशिप तेगे अको मरंग पढ़ाव जैसा वो पी एच डी को मनिया इना को पढ़ाव बिटाए ताना नैन फेलोशिप ते जदि को साला चापी एन रे रेद कुड़ी हन को शिक्षा रे ओल पढ़ाव रे रबल रबल के सेसेना नैन फेलोशिप लेकाते अबु जनजातीय समुदाय रेन हन को बुगिन लाभ को नामे ताना कुड़ी हन को ओकन मुसिंग जन्म ताना को एन मुसिंगे तेगे सरकार आया नुतुम ते पैसा जमाए ताना एन पैसा 18 बरस तायम ते पोसा लाभ कोलो ते नैन पैसा इन कुई हन मारंगेन रे नामुराय तना कुड़ी हन को ओल पड़ा ओंडो पाइट रसुए दुका इनुंग रे सरकार पाएते एसु पुरे दिंगा को नामे तना इनुंग रे बुगिन ट्रेनिंग प्रोत्साहन पैसा टाका को इमा को तना अकुआ मनोबल को चितने तना अकुआ इनुंग ती अरासा को इमा को तना बुगिन मांडी उतुरिया प्रावधान को इमा को तना इनुंग कोटाएते नौकरी कोते को सेनो तना निकते अकुआ वा दुर्रिया स्थिति को भुगी होताना हाथुरिया पाइटी पनाइट रे कुड़ी कोगे नेलोवा नेन कुड़ी को ऐसु भुगी ओंडो सापा सोयता ते को पाइटी तेने ना अबु नीलाकाट गया ची आंगनबाड़ी पाइटी को रे कुड़ी होन कोगे पाइटी तेने महिला मंडल महिला समिति रे कुड़ी कोगे पाइटी रिके तेने ओंडो नेन महिला मंडल ओंडो महिला समिति रे नेतृत्व कुड़ी होन कोगे इदिए केटे वो अदुवर जोड़ाई चापाकल को बाई हुरे कोरियो निमिर दो कुयोन को ट्रेनिंग को तना अंडो हाथुरिया हुड़िंग मरंग पाइटी को कुड़ी उनको के पाइटी देना जनजातीय समुदाय रन कुड़ी को हाथु सही रे सुवत दो का निमिर दो मरंग मरंग बाजार कोरे शहर कोरे जाज चलाव रे ट्रेनिंग गाड़ी मोटर चलाव रे ट्रेनिंग टेम्पो चलाव रे ट्रेनिंग को इमा को तना ट्रेनिंग केन चना एसु बुगिले का गाड़ी मोटर अंडो टेम्पो को चलावे तना टेम्पो चलाव के ते अकुआ वारिया आर्थिक स्थिति को सुधारे तना अंडो हुन गणा को बुगिन स्कूल को रे को पढ़ाओ इची को तना अंडो बुगिन शिक्षा दीक्षा को हुन को नामे तना सरकार पायते मरंग मरंग शहर बाजार को रे कल्याण विभाग पायते कुड़ी हुन को लगे टाइम लगे अंडो एन हॉस्टल को बायो तना अंडो हुन को एन रे टाइकिने ते बुगिन पढ़ाव को बुगिन स्कूल को रे बुगिन कॉलेज को रे को पढ़ाव का मिलते सरकार पायते आवासीय हॉस्टल को बाइय को तना जनजातीय समाज रेन कुड़ी हुन को इमिन को जागरूक या न ची हॉस्टल को रे टाइट को काको नाम के रो जाता रे टाइप से किने ते पढ़ाव दो को पढ़ाव तना अंडो अकुआ अनुतुम चितन ते को रकबे तना अंडो अकुआ कुमु को पूरे तना हाथु हाथु रे महिला मंडल महिला समिति रे कुयोन को नियम ते समय ते को दुब जारुन तना अंडो नियम समय ते गे मी पैसा रे हो बार पैसा रे हो को जामा उंडी तेने ओ कोई पैसा ते कारे दो मी चिपुर ची बार चिपुर चावली ते रो जमाए तना हुड़िंग हुड़िंग ते जमा के ते ना अकुआ महिला मंडल रे लाख लाख रुपये लिखा को जमा तड़ा नैन पैसा दो आको आको महिला को गे बैंक रे सेन के ने ते नैन पैसा दो को जमा ता अंडो सोमाय लिखाते दरकार लिखाते बैंक ते पैसा को ओले तना जमाओ को जमाए तना ओंडो ओकोय एन महिला मंडल ते जान जितन हासु दुकुची जान तकलीफ करे बिटायन रे दो आको महिला मंडल पाएते दिंगाओ को दिंगाई तेने ओंडो अगर जदी हुन हासु ये ने जी हुन जाता रे एडमिशन न लगे पढ़ाव लगे किताब कॉपी किरी लगे पैसा जरूर हुए किने एन दो एन महिला मंडल ते पैसा इडिके ते एन हुना जरूरत को पूरे ही तेने हासु दुकु रे टाइन बाइन ओंडो साफ सफाई रे जागर जनगर को निन महिला मंडल रे को जागर तना ओंडो हुन को चिलके को रिके कुआ हुन को हासु तन रे चिलके को सेवा कुआ इनरिया जागर को
ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱚ ᱱᱩᱭᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱸᱰᱮ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ

आबे ने ले जूते ले पेरे चावले।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य का पहिया बनकर लगन से काम करने वाली सहिया बहनों की, जिनके काम के महत्व और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम इस विषय पर कई जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें हमें सहयोग करेंगी हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। हमारे श्रोता भाई बहन के लिए यह जानना जरूरी है कि राज्य भर की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने और सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में सहिया बहनें की अहम भूमिका होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने काम और जिम्मेदारी निभाने के दौरान सहियाएं किसी दुर्घटना, अपंगता या मौत का शिकार भी हो जाती है, जिससे उनके आश्रितों को सामाजिक व आर्थिक तौर पर अनेक तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत सहियाओं और सहिया साथी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरिए आर्थिक सुरक्षा मुहैया करा रही है।
0: पूर्णिमा बहन, सच में ये बड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया सहायता निधि के जरिए भी अपंगता या मौत होने की सूरत में सहिया और उनके परिवार को कई तरह से आर्थिक सुरक्षा व सहायता दी जा रही है। इसमें सहिया, सहिया साथी, बीटीटी और एसटीटी को लाभुकों की श्रेणी में रखा गया है।
1: चंपा मुनि दीदी, हमें लगता है कि सहिया बहनों को मिलने वाले सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में अपने श्रोता भाई बहन को और भी अधिक जानकारियों से अवगत कराने के लिए हमें सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अक्के मिंजी से जरूर मिलना चाहिए। उनसे मिलने वाली जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी।
0: सही कह रही हैं बहन। चलिए बिना देर किए अक्के मिंजी से मिल ही लेते हैं।
1: जोहार अक्के दीदी, लगता है कि हम सही टाइम पर पहुंचे हैं कि आप फुर्सत पे मिल गए। एक जरूरी काम था आपसे।
2: कैसी हो पूर्णिमा, सब खैरियत तो है ना? बैठकर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए।
1: अक्के दीदी, आज हम राज्य भर की सहिया बहनों को सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का लाभ दिए जाने के विषय में सहिया रेडियो के श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं। इसी बारे में आपसे और भी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, ताकि वे जानकारियां सीधे हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम सुनने वाली सहिया बहनें भी इसका लाभ उठा पाएं।
2: वाह पूर्णिमा, तुम सचमुच बहुत नेक मकसद से आई हो। जो भी जानना चाहो बेझिझक पूछ लो।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता भाई बहन को यह जानकारी दे कि राज्य भर में काम कर रही सहिया बहनों को किस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है और यह लाभ किसकी ओर से मिलता है।
2: चूंकि सहिया ग्राम सभा के द्वारा चयनित एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो ग्राम सभा के अंतर्गत सभी लोगों के लिए कार्य करती है और उसको कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है और उसको बहुत बार अपने घर से निकल करके अस्पतालों में जाना होता है, जिला मुख्यालय में आना होता है। तो ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से

0: उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ एनएचएम के द्वारा प्रावधान है जिसे हम सहिया सहायता निधि या कॉर्पस फंड कहते हैं, और कुछ जो भारत सरकार की योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और फिर है जिसमें सहिया स्वैच्छिक होकर भी पार्टिसिपेट करती है, एक है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो इन सारे जो सुरक्षा कवच हैं उनसे सहियाओं को लैस किया गया है ताकि वो बेहतर रूप से सहिया के कार्य कर सकें।
1: अब आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर किन हालातों में सहियाओं को सहिया सहायता निधि से आर्थिक सहायता मिलती है और कितनी मिलती है?
0: सहिया जब कार्य के दौरान सहिया की मृत्यु होती है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पल्स पोलियो के लिए सहिया डोर टू डोर विजिट करके पोलियो ड्रॉप पिला रही है और उसी समय कार्य करते दौरान उसका हृदय गति रुकता है और उसकी मृत्यु होती है, तो गतिविधियों को करते हुए कार्य के दौरान अगर सहिया की मृत्यु हुई तो सहिया सहायता निधि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रदत्त है उससे 25,000 रुपया उसके आश्रितों को, उसके परिवार के सदस्यों को 3 दिनों के अंदर मिल जाता है। और कोई सहिया लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हुई या काम नहीं कर रही थी और उसकी मृत्यु हुई तो उसे उसके परिवार के सदस्यों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई सहिया अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका अगर गोल्डन कार्ड नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एकमुश्त 25,000 रुपये की सुविधा है। कार्य के दौरान बहुत बार सहियाओं की अपंगता हो जाती है, जैसे हमारी एक सहिया बहन का पैर कट गया जब वो एक कार्यक्रम से लौट रही थी और एक्सीडेंट हुआ तो ऐसी बहनों को भी परमानेंट अपंगता में 25,000 और पार्शियल अपंगता में 50,000 रुपये का प्रावधान है। इसके साथ साथ अगर कोई सहिया आगे की पढ़ाई करना चाहती है तो उसके लिए एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप राशि उसके शिक्षण संस्थान में उसके फीस के रूप में 50,000 रुपये तक की सुविधा दी जाती है। और कोई सहिया अगर 60 साल के बाद अपना कार्य छोड़ना चाहती है या वो पिछले 10 साल तक अपना सेवा दी है और स्वेच्छा से इसे छोड़ना चाहती है तो उसे एकमुश्त 20,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
1: हमारे श्रोताओं को यह भी बताएं, यदि जरूरत पड़ जाए तो सहिया बहनों को सहिया सहायता निधि से लाभ लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
0: इसके लिए जैसे कोई सहिया की मृत्यु हुई तो तुरंत उसके बगल के गांव की सहिया या सहिया साथी बहने उसके परिवार के सदस्यों का पासबुक का प्रथम पेज और उसके जिसमें की सारी विवरणी रहती है, उसके साथ आधार का जेरोक्स उस व्यक्ति का जो उसका आश्रित है, उसके साथ जो अपने पंचायत में हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं उनका एक पत्र की ये सहिया की मृत्यु हो गई और हो सके तो मृत्यु प्रमाण पत्र, इन चीजों के साथ में जब चीजें जमा की जाती हैं डॉक्यूमेंट तो जिला से, जिला मुख्यालय से सिविल सर्जन के माध्यम से उनको प्रोत्साहन राशि से जो निधि मिलनी है, सहिया सहायता निधि से जो निधि मिलनी है, पैसा मिलना है वो उन्हें दिया जाता है। या कोई सहिया

0: रुपए का लाभ मिलता है। दूसरी जो योजना है सुरक्षा के लिए, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत जो प्रीमियम सरकार प्रत्येक सहयाओं के लिए लगभग 450 रुपये भरती है हर एक वर्ष। और इसमें यदि किसी सहिया का एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, या किसी की मृत्यु होती है तो भी 2 लाख रुपए तक की राशि उसके आश्रितों को मिलती है। जो तीसरा योजना है, जिसको हम लोगों ने सहियाओं के लिए ओपन छोड़ा है कि वो भी इसका लाभ उठा सके, वो है प्रधानमंत्री पेंशन योजना, जिसमें सहिया को खुद प्रीमियम भरना होता है और 60 साल होने के बाद उन्हें जितना वो प्रीमियम देते हैं उतना ही सरकार उनके लिए पैसा देती है, और 60 साल होने के बाद ये उनके लिए पेंशन योजना के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हम तीन जो सरकार की विभिन्न सुरक्षा योजनाएं हैं उनसे सहियाओं को हम लोगों ने सहायता प्रदान किया है।
1: यदि कोई सैया बहन नई शिक्षा के जरिए अपना भविष्य संवारना व आगे बढ़ना चाहे तो क्या इसके लिए भी सरकारी स्तर पर कोई प्रावधान है?
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ऐसी सहियाओं के शिक्षण संस्थान में 50,000 रुपये तक की सहयोग राशि प्रदान की जाती है, ताकि सहिया अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे कर सकें।
1: एक जरूरी सवाल यह भी है कि यदि कोई सहिया 60 वर्ष की हो और काम करने में असमर्थ होने पर स्वेच्छा से पद त्याग दे, तो उन्हें सहिया कैश प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी राशि मिलती है और उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है?
0: यदि कोई सहिया 60 वर्ष की हो गई है और उसे पद त्याग करना है तो अपना त्याग पत्र ग्राम सभा में सूचित करते हुए उचित माध्यम से सिविल सर्जन तक पहुंचवाती हैं, BTT और MOIC के माध्यम से, और DPC के सहयोग से उस सहिया को कैश प्रोत्साहन राशि 20,000 का सहयोग दिया जाता है, और उसके रिटायरमेंट का एक अच्छा सा आयोजन करके उसे कैश राशि दे करके विदा किया जाता है।
1: अकय मिंज जी, आपने सच में राज्य भर की सहियाओं को दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के बारे में बहुत उपयोगी जानकारियाँ दी हैं जो हमारे सहिया बहनों के काम आएगी। साथ ही हमारे श्रोताओं को भी यह विषय में गहरी जानकारी मिल गई। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत खुशी हो रही है पूर्णिमा बहन कि हमारी सहिया बहनें सामाजिक आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बन रही हैं। इस सुरक्षा कवच से अब ना सहियाओं को और ना उनके आश्रितों को भविष्य के जोखिमों की चिंता सताएगी।
1: बिल्कुल चंपा मुन, हमारे सहिया बहनों से जुड़ी एक बढ़िया बात ये भी है कि गर्भवती महिलाओं के साथ उनके सास या परिवार वालों को बुलाकर प्रसव काल की समस्याओं, प्रसव पूर्व तैयारी, गर्भवती महिला की देखभाल और उसके खान पान के बारे में जानकारी देने के लिए सहियाओं के सहयोग से जो सास बहु सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसमें हर सम्मेलन पर सहिया बहनों को 100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है।
2: पूर्णिमा बहन, मेहनत का फल मीठा ही होता है। आर्थिक प्रोत्साहन मिलने पर काम के प्रति लगन भी बढ़ता है और उत्साह भी।
1: अब विदा लेने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
2: प्यारे श्रोता भाई बहन, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत।
1: जोहार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। सैया।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म यस बॉस के इस गीत के साथ। गायक हैं अभिजीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रोजा से, संगीत है ए आर रहमान का।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र।

0: इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म रंग से, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृहमंत्री ने क्या कहा।
5: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। केया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
6: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेकर घोटाला बोलिए,

0: तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है।
1: जी
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना है।
1: जी तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुभव जी, आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला, जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी, पिछले चुनाव से पहले आए थे, और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया, और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है, उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे, और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की, जिसके वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बार जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स, घोस्ट वोटर्स भी निकल गए। पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं, उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में, इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है, वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी,
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वकफ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं कर सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़ें, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
1: मैं केया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति देके गए हैं, पहला बात। दूसरी बात यह कि 45 दिन के अंदर जो सेवंथ पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है

0: उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है, वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा ये, जो कोई एक महीना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है कि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, वो पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थे ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कट बनी होगी। देखिए, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़े थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई ब्रजा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पर आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए, आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, अपने आप में जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी वो

0: अब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और किया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को है। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री

0: ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आत्काल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा

0: तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

0: प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VC के IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वीसीके, आईयूएमएल और बायबाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। स्टेज टू के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है, इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वजीर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र
2: वो भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और

0: संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इधराजाती बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा भी के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग एमबीसी के और आईयूएमएल ने टीवी के को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत के 107 अरकान कानून साज असेंबली है अरकान कानून साज असेंबली है आईयूएमएल के एके सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवी के की हिमायत करने वाले लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ। फुरकान खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली तश्वीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी पांच बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मुनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की महदूद नहीं है बल्कि ये मुआशरे नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
3: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग आपने सैनिकों के मनोबल को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। टीएमआर जैसे संस्थानों को बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहा है।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारत सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मुस्तहकम रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकत दारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहम और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। مشترکہ ورکنگ گروپ

में सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नेज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का एदा किया। कौंसिल दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात किया करने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए त्रिवेणी हेलीपैड से किलोमीटर तवील मेगा रोड मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोग और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की वो है कि उसे एक माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें एक माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियादी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC देही तरक्की वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। विषयों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुताल्लिक खिदमात शहरियों के साथ चीज में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने की तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वे सेठना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी की और कहा कि यह कानून

0: आया और मोहम्मद गजन भी आए। इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। विनाश से निर्माण मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच। और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियोपॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्र जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं, तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
1: रीसेंट टाइम्स एज यू राइटली मेंशन्ड, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग आवर हेरिटेज ग्लोबली। through yoga,

0: through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilization on the global stage?
1: Yeah, in fact, it's very interesting that the question that you asked, the fact that the Somnath Temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath Temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Char Dham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath Temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
0: Right.
1: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
0: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
1: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
0: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
0: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। सब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं, सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। सुनहरी यादें कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं चंद फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म परिचय के इस गीत के साथ। गायक हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह। बोल गुलजार के हैं संगीत आर डी बर्मन का।

फिल्म परिचय के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म दूरियां से, इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: चैट जीपीटी सी
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म इजाजत से।

फिल्म इजाजत के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये गीत है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, इसे गाया है अलका याग्निक ने, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं समीर के।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुनहरी यादें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सितार वादन, कलाकार है निशात खान। आलाप और गत तीन ताल में निबद्ध है राग चांदनी कल्याण। तो प्रस्तुत है निशात खान का सितार वादन।

546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह इन्हीं मीटरों पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।